0: ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते।
1: बड़ा बड़ा फलत हासिल कराम से।

0: چلو زندگی چاہیے تو
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har achhe store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: चौधरी यासीन के असेंबली इजलास का अग सीट वापस डारींदी नून लीग वारा धांधली के जोर से इकदार हासिल करण चाहन था अस कोट के हक से दाणो हण न डींदी कश्मीर जो फैसलो कश्मीर जो अवाम ही कंदो धांधलियुनि जे माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जे पीपल्स पार्टी ते टोक ही तव्हां न पर फार्म 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे क़यामत 2024 में आई हुई जॾहिं अव्हां खे खैराती मैंडेट ॾिनो वियो सिंध जे सीनियर वज़ीर शलजीना मेमुन जो मरियम नवाज़ खे जवाब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जिल इनाम मेमुण चयो आहे त नवाज़ शरीफ जिया मरियम नवाज़ बि चोर दरवाज़े खां इक़दार में आई आहे मरियम नवाज़ जेली मेडीडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे वज़ीर आला थी आहे नून लीग आज़ाद कश्मीर में बि धांधली ज़रिए इक़दार मारणु चाहे थो पर असां ईअं थियण न ॾींदासीं अॻूणे वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ चयो त चूंडुनि में धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंदि थियणु घुर्जे जाइज़ शिकायतूं हल थियणु घुर्जनि असांजो मज़ाक उॾायो वेंदो त नतीजा बि निकिरंदा

हंगो में पुलिस चेक पोस्ट के हमले में शहीद अलकारन जी जनाजे नमाज अदा कई वही। दहशतगर्दन जे हमले में डीएसपी सिटी समेत 10 अलकार शहीद, 20 अलकार जख्मी थी पिया हुआ। डीपीओ तारिक हबीब चवण आए तो खजीना बाडा पुलिस चेक पोस्ट से दहशतगर्दन हमलो कयो, डीएसपी सिटी दरिया खान समेत 10 अलकार शहीद थी वया, 20 अलकार जख्मी थी पाया। पुलिस के जवाबी फायरिंग में 8 दहशतगर्द मारजी वया, 6 दहशतगर्द के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: पाकिस्तान के माली सहारो सऊदी अरब पाकिस्तान जो 5 अरब डॉलर जो कर्ज रोल ओवर करे छो जरियन मूजिब सऊदी अरब यो कर्ज भरल अरब इमारात के अदायगी लाए पाकिस्तान के 3 महीने लाए दिनों हो सऊदी अरब पारा 5 अरब डॉलर जो कर्ज 3 साल लाए रोल ओवर किया स्टेट बैंक जो चवण है तो 5 अरब डॉलर रोल ओवर थे बाद पाकिस्तान के नाणे की मटा सटा वाली पोजिशन मुस्तहकम थी है परदेही अदायगी जो दबाव फौरी घटी वो है।

इंतजाम बाबत इलाकाई निज़ाम जोड़ने वाली तजवीज़ रद्द करे छी। आबन हरमुज में टी दुर की शमूलियत कबूल का इनकार। ईरानी नायब परदेही वजीर काजम गरीब आबादी है तो उमान के आबन हरमुज के बिन मुल्क में एक जेतरो विरहण वाली तजवीज़ रद्द कई है। ईरान के हदन सामूरी रस्तन की जिम्मेवारी तेहरान है। उमान पैं सामूरी हदन की जिम्मेवारी संभाले सके तो। उमान ईरान जो आबन हरमुज बाबत मनसूबो रद्द किया हो तो हरमुज बंद ही रहो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: जी एफ एम 90.8।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आप सुन रहे हैं
4: GFM 88
3: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: कंदे चयो आहे त ईरान तरफ़ां फायर कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि. ईरानी पासदार इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अॾे ऐं सेनेटकाम जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे. उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल पंज मिज़ाइल नाकारा बणाया विया.

विचोबर में नई जग शुरू थी वई आहे ऑयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद सऊदी अरब जे अमेरिका सां गॾु इराक में कार्रवाई ईरान जे हामी ग्रुपनि जे थाकनि खे निशानो बणायो सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ऑयल रिफाइनरीज ते हमिलो कंदड़ ग्रुपनि खे निशानो बणायो आहे मुल्की सलामती ऐं ख़ुदिमुख़्तारीअ ते को बि ठाह न थींदो अमेरिकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तसदीक कई वई इराकी फेड ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी पाकिस्तान खे माली सहारो सऊदी अरब पाकिस्तान जो 5 अरब डॉलर जो कर्ज़ रूल ओवर करे छॾियो ज़रियनि मूजिब सऊदी अरब इहो कर्ज़ गॾियल अरब इमारात खे अदायगियुनि लाइ पाकिस्तान खे 3 महीननि लाइ ॾिनो हो सऊदी अरब पारां 5 अरब डॉलर जो कर्ज़ 3 सालनि लाइ रूल ओवर कयो वियो स्टेट बैंक जो चवणु आहे त 5 अरब डॉलर रूल ओवर थियण बाद पाकिस्तान जे नाणे जी मटा सटा वारी पोज़ीशन मुस्तक़िम थी आहे ऐं परॾेही अदायगियुनि जो दॿाउ फौरी घटिजी वियो आहे सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर जे अमेरिकी सदर सां हंगामी मुलाक़ात सऊदी वली अहद जो पैगाम बि पहुचायो अमेरिकी मीडिया जो चवणु आहे त सऊदी जे दिफ़ा वारे वज़ीर शहज़ादा ख़ालिद बिन सलमान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात कई उन खां अॻु हिन नायब अमेरिकी सदर सां मुलाक़ात करे ईरान सां छिकताण घटाइण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई

PNS ते मूर जो अरबी समुंड कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन उन वीह माण्हुनि खे रेस्क्यू कयो वियो। माण्हुनि जी ॿेड़ी गवादर खां 20 नाटकिल मेल ॾखण में इंजन जी ख़राबी सबबु फासी पई हुई। ॿेड़ीअ में 11 पाकिस्तानी 8 ईरानियुनि समेत 9 ॼणा सवार हुआ।

सिविल अस्पताल मेयर जो सिक्योरिटी गार्ड हथियारबंद नथा कतल गोठ छेण जो दड़ो वासी रुस्तम उर्फ सागर खोसो ड्यूटी करे गोठ वनी रहे हो त हथियारबंदन खेस कतल कयो मढ़ जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल थारू शाह भरसा पानी के वारे ता पीरसन सरोटा हणी कतल गोठ पीर पांधी में पानी के वारे ता पोरेत मोहरम राजपर के सरोटा हणी कतल कयो वयो लाश पोस्टमार्टम ला अस्पताल मुंतकिल कयो वयो शायरन के सरताज हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 283 उर्स के बे डी जो तकरीबू पांदेड़न जो वो अंग भिटजी नगरी से मौजूद पेरे डी सुगढ़ कचहरी मल ए घोड़न की रोड जा मुकाबला राग रहाण की महफिल थी।

0: हिक वण सिंध मर्जे नाव मोम जारी केटे न्यूज ऐं कावज जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वरजाओ
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
4: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ़ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
3: इस्तेमाल कीअं कजे
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: स्क्रीनू।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: टॉप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
0: फकीरी नीम पिकली हिट सॉप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत।
0: फकीर
1: प्रिकली हीट सॉप
0: जल्द को जैसे होने वाली घुमरियों खारिश को कम करने में। फकीरी नीम पिकली हिट सॉप
1: स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी फैन।

0: ऑल्टरनेटर, एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर प्रोटीन मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए। स्किन को आपको दे बेताब, निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का रिप्ट ऑफ। बायो
1: का जी एफ एम।

0: अजीज सोलंगी मीरपुर खास से गल है।
1: अजीज सोलंगी मीरपुर खास से कैसे ठीक ठाक?
0: अल्लाह जा कर्म लगाते हैं। आप बताइए बाजी उस्तार
1: जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं?
0: क्या जी बिल्कुल प्रोग्राम आज
1: अच्छा। मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?

0: ओके सुनाइए प्लीज।
1: अज तो खेती जानू के दाद खुशी थिया कपड़न में लखो मा पा कपड़न में लखो मा पा।

0: सुनाएगा इंशाल्लाह।
1: तो सुना दे।
0: दुनिया सारा पानी थींदी दाजानी चुप चुप चुप दुश्मन सारा पाणी थींदी दाओ प्यारा।

çok çok çok dünyalara perhedindi. Ağacan çok.

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पंजाब जे शहर लाहौर में घर जी छित किरी पई, 10 ॼणा दबजी फोत थी विया, 3 ॼणा जख्मी थिया आहिनि। लाहौर जे बागानपुरा में घर जी छित किरण वारो वाकियो पेश आयो आहे। रेस्क्यू अमलदारनि मूजिब घर जे मलबे हेठां 10 ॼणनि जा लाश ऐं 3 ज़ख्मियुनि खे कढियो वियो आहे। फोतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे।

कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन उणवीह माण्हुनि खे रेस्क्यू कयो वियो. माण्हुनि जी ॿेड़ी गवादर खां 20 नाटकेल मेल जे फ़ासले ते फासी पई हुई. ॿेड़े में 11 पाकिस्तानी ऐं 8 ईरानी समेत 9 उणवीह मुहाणा सवार हुया.

0: सिविल अस्पताल मेहर जो सिक्योरिटी गार्ड हथियार बंधन था कतल घोट शहर जो दड़ो वासी रुस्तम उर्फ सागर खोसो ड्यूटी तां वापस घर वही रो हो त केस कतल कयो वियो। थारू शाह भरसा पांजे जे वारे तां पीरसन के सिरोटा हणी कतल घोट पीर बांधी में पाणीअ जे वारे तां पोरे मोहरम राजपर के सिरो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
2: मीरपुर खास की हो तो आवाज भी मीट
3: सूर आई सोडियम
4: सिर्फ जेल सूर लाए
3: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई जेल जी तकलीफ है सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
4: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थे हंध ते डी में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो आराम से एहसास हासिल करियो। जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: मोहम्मद उमर बुगियो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्स लखलाउन जारी आहन लेबोरेटरी टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन क्रिटिकल केयर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर दाखिला फीस 5000 महवार फीस 4000 रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलिएटेड विद सिंध टेक्निकल बोर्ड एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज मीरवा रोड नियर डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास वधिक मालूमात लाए 0300-2823-667 0333-7214436
6: अखियन के सब का वे इदारे जहा मशहूर ए तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरेशी ए सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान समारिन जो इलाज कंदा आहिन टाइम रोजाना सुबह 10 वगे का 1 वगे ताई शाम 6 वगे का रात 8 वगे ताई आचर मोकल है जुमे जे दी ऑपरेशन कया विंदा एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर अखियन की अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास मोबाइल नंबर 0303-2617-077
7: खुशखबरी हाँ अवा के परेशान रहने की का भी जरूरत न आबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
8: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जी मीरपुर खास FM 88 की आवाज जो आपका पैगाम स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर्स शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स NGOs फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स CNG स्टेशंस शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स सीड कॉर्पोरेशन सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 0332-724301 और 0333-7220071।
9: हेलो
10: हाँ बेटा रोटी खा
9: दी नहीं मम्मा
10: अच्छा घर के लिए मलाई
9: मम्मा आपको कितनी बार बोला है मुझसे सिंधी में बात मत किया करो आई डोंट लाइक इट

0: बेटी।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्टों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जी रुखसार, आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू. हमारा सेगमेंट है बोलो तो माने, और बोलो तो माने में आप लोगों ने टंग ट्विस्टर कह के दिखाना है. टंग ट्विस्टर ये है कि काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, ठीक है, जल्दी जल्दी कहेंगे. काशिफ ने कॉफी के कप कई नहीं सॉरी मेरा भी गलत हो गया. काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, ठीक है, इस तरीके से या फिर इससे ज्यादा तेज, ठीक है. सो देखते हैं कि आज का टंग ट्विस्टर कौन अच्छा अच्छा बोल पाता है. 03000113488 के ऊपर इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर. अच्छा, मैसेजेस को इंक्लूड करूंगी इस कॉल के बाद. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम आसिफ अली चाचा, कैसे हैं, ठीक ठाक?
1: आप सुनाए बैठी, आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बताएं टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे.
1: थोड़ा सा बताओ, काशिफ ने
0: कहना है काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे.
1: काशिफ ने कॉफी के कप कतार में रखे, काशिफ ने कॉफी के कप कतार में रखे.
0: नहीं नहीं सुने तो सही, काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे.
1: काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, काशिफ ने कई कप कतार में रखे, काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, काशिफ ने कई कप कतार में रखे.
0: नहीं इतना अच्छा नहीं बोला, खैर कुछ और कहेंगे जल्दी से.
1: अशफाक भाई का शो नहीं चल रहा.
0: अशफाक भाई का शो नहीं चल रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा. चलेगा चलेगा,
1: कोरोना का शो जबरदस्त.

चलें इंशाल्लाह जरूर चलेगा, आप बस सुकून और इत्मीनान रखें और तहम्मुल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और इसके अलावा जी क्या कह रही थी मैं, हाँ मैसेजेस पढ़ने, हमें मैसेजेस बहुत सारे आ चुके हैं। अच्छा मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं जी, हमें मैसेज किया है, दिस इज चिश्ती फ्रॉम पंजाब एंड सिंध। स्वीट आरजी कैसी हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कहते हैं कि आज लगता है शो होगा जरा हटके, बिकॉज आज शो स्टार्ट करने का स्टाइल जरा वखरा सा अच्छा लगा। रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग तेनू वेखे बिना दिल नहीं लगता, मोहल्ले विचो कूच ना करी। ओके ठीक है, प्ले करते हैं।

0: अब्दुल रज़ाक हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद सिंधी हमें सुन रहे हैं, सलाम कैसी हो, नाइस शो आपका। मैं बहुत अच्छी हूँ। एक और कॉलर लेने जा रहे हैं लाइन पे। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? नदीम अहमद। कैसे? ठीक ठाक। ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि या प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं
1: प्रोग्राम?
0: ओके, मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?

सॉरी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है. हेलो, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. मजबूरन मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी. दोबारा से ट्राई करें और मेक श्योर जब आप कॉल करें तो आप हेडफोन्स वगैरह निकाल दिया करें या किसी ऐसी जगह पे जाके बात मत किया करें जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अंदर कहीं छुप के बात करेंगे आवाज सही से जाएगी. नहीं जाएगी सही से क्योंकि सिग्नल्स नहीं आते प्रॉपर. ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखते हुए उस जगह पे जाके कॉल करें जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हो. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो हेलो, इनकी तो आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है. क्या किया जाए, एक गाना प्ले करें क्या? आगे गाना प्ले करते हैं, हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे.

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: छा तव जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजण, तो पई तवा लाए आए एक बेट।
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
4: तो पई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सोना तो करी।
5: यहाँ वाकई फायदे वाली आए छा।
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासर थे हंद ते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
5: सिर्फ चेले सूर लाए
4: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेले जी तकलीफ, सट धक लगन, पुराना जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
5: इस्तेमाल किए कजे
4: मुतासर थे हंद ते डी में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो, आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर का आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर का नालो वठी खरीद करो। फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजी रुखसार है और मेरा साल पूरे एक बजे तक का है. और हमारा सेगमेंट बोलो तो मानी है, जिसमें आप लोग कह के दिखा रहे हैं एक अदर टंग ट्विस्टर और कॉल कर रहे हैं 03000113488. टंग ट्विस्टर है जी. काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, ठीक है, ये कहना है. जो बंदा ये बोलेगा सही सही ज्यादा ज्यादा और अच्छा अच्छा बोलेगा वो विन करेगा इस सेगमेंट को, ठीक है. तो कॉल कर सकते हैं आप लोग 03000113488. वाजिद सिंधी ने हमें कमेंट किया है, रुखसार कैसी हो, शो नाइस है. नाइस के अलावा और क्या है शो, जल्दी से बताएं. गुलाम मोहम्मद मनी बलोच लिखते हैं कि आप ही रुखसार, कल तो आपने भिटजा भिटाई नहीं चलाया था, नहीं लगाया था. अच्छा,

इसी के साथ साथ जी आगे और 03000113488. अच्छा, इसके अलावा हमें सफदर बलोच के मैसेज आए हैं. एक और शेर लिखा है, खुशियां नसीब हो उसे दुआ करता हूँ, अच्छा नसीब हो उसका दुआ करता हूँ, और आगे फिर से मिसिंग पार्ट. सफदर बलोच, आप लिखते हैं इतना है, हमेशा आपका मैसेज मिसिंग आता है, मतलब कुछ आधे अधूरे अल्फाज जो कभी ही पूरे नहीं हो पाते आपके मैसेजेस में. व्हाई?

साथ साथ हम एक और गाना प्ले करते हैं एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय आतिफ असलम, इसको हम सुनेंगे और इसी के साथ कुछ हम लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: ओके जी, लास्ट लकी कॉलर लाइन पे है हमारे साथ. हेलो,
1: कौन सुनाए?
0: कौन सा सॉन्ग सुनाऊं? ओके जी, कॉल भी ड्रॉप कर दी. अच्छा, लास्ट लकी कॉलर, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
2: बताए कैसे?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ सरदर्द. आज की अच्छी बात क्या है?
2: आज की अच्छी बात कदर ना करने वाले लोगों को खो देना नुकसान नहीं बल्कि निजात है.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या खूबसूरत बात है. और कुछ कहना है सरदर्द? थैंक यू सो मच. और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत, और लास्ट में हम प्ले करेंगे गाना अहमद जहाजीब का. और इसी के साथ फाइनली इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट-चैट होगी मंडे को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सो ना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफ.

0: It's 1 p.m. This time check is got to be...
1: अब आप सुनेंगे
2: हमला अमेरिकी फौज मौजूद विच ओवर में अमेरिकी फौजिन ते हमले जे जवाब में ईरान खिलाफ कार्रवाई कई वही ईरान जे बे अमेरिका खिलाफ जवाबी कार्रवाई उर्दन में अमेरिकी अडे ते हमलो उर्दन पारा ईरानी मिसाइल

जारी आहिनि। वज़ीर आज़म सऊदी अरब सां बि ॻाल्हायो आहे, धुरी हमला बंदि करे सहप ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि, तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयो वञे।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: ओके जनाब, क्या आप आते प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद आप जानना चाहते हैं। अक्सर ओकार देखा जाता है कि आप लोग जो है ना अपनी स्किन को लेकर, अपने खूबसूरती को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो आप लोगों की ये परेशानी को दूर किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती रहती बल्कि आप लोगों को ऐसा हुसन मिलता है, ऐसी शानदार सी ब्यूटीफुल स्किन मिलती है कि आप देख कर कहते हैं कि वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। बिल्कुल जी बताया जाएगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं, आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किस तरह से होने वाले हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले वो ये कि आज आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से मैं टॉपिक पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आजकल के दौर में जितने आप लोग ड्रामे देखते हैं, मूवीज देखते हैं या फिर सीरीज देख रहे होते हैं, तो आजकल के दौर में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका कोई फेवरेट नहीं होगा, जिसकी कोई फेवरेट पर्सनालिटी ना होगी, फेवरेट कोई भी सेलिब्रिटी ना होगी। तो आज मैं आप लोगों से सवाल ये पूछना चाहूंगी, जैसे हम ये जो चकाचौंध वाली जिंदगी देख रहे होते हैं आजकल सेलिब्रिटीज की, तो हमें ये एक एहसास होता है कि भाई काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि हम इनकी लाइफ जिए या हमें मौका मिले इनकी जिंदगी जीने का। तो आज मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहूंगी वो बिल्कुल इस तरह होने वाला है कि आप बताएंगे अगर आप लोगों को मौका मिले एक दिन के लिए किसी सेलिब्रिटी से अपनी जिंदगी को जरा एक्सचेंज करने का, यानी कि आप उसकी जिंदगी जिए और वो आपकी जिंदगी जिए, तो आप किस सेलिब्रिटी का इंतखाब करेंगे? कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी जिंदगी से आप जरा मुतासिर हैं वो आप मुझे बताएंगे। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए और पेज को फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे ही हमारे पोस्ट पर आ जाते हैं तो आपको हमारे जो है ना व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिलेगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, ये तीनों काम है जो कि आप लोगों ने करने, तो जल्दी से कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम सुन रहे हैं और उसके साथ साथ आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और मुझे बताइए अगर आपको चांस मिल रहा हो, मौका मिल रहा हो किसी एक सेलिब्रिटी से अपनी जिंदगी को जरा स्विच करने का, यानी कि वो आपकी लाइफ गुजारे और आप उसकी लाइफ गुजारे, तो आप किस सेलिब्रिटी का इंतखाब करने वाले हैं? ओके जी, तो आपके मैसेजेस जो कि आना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। नजीर कोसो भाई हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है और लिखते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात हमेशा आएंगी लेकिन मुस्बत सोच हमें हिम्मत और उम्मीद देती है, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल, क्या ये बात ठीक है कि आते साथ इतनी लंबी चौड़ी सी पोएट्री आप भेज देते शो के अंदर, एक छोटी मुनासिब सी शायरी भेज दिया करें वो ज्यादा अच्छी रहती है। और मुमताज अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सोचम तवा जो हाल अवाल पूछा अमान जो शो तमाम सुठो आए तवां जो आवाज भी सुनो आए, थैंक यू वेरी मच जी, तवां जो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम के पसंद कयो पया। अखलाक बलूच भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहा जाता है। आदिल कहते हैं सिदरा ये सॉन्ग लगाएगा बिल्कुल यू गानो तमा के बुधराइंदा जी। और वहीद पफाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सिदरा जी, क्या हाल चाल है आपके, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्राम जेकब आबाद से आपके साथ साथ खुश आमदीद एंड वेलकम। मूसा कोरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, हिदायत अल्लाह अहमदानी कहते हैं सलाम कैसी हो, मैं भी अच गया इतने सी में रजाई तो दो भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अच्छा हैप्पी गर्ल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती माय फेवरेट आरजे मुस्कान, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, वेलकम टू शो स्वीटी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। चाचा खालिद कहती है अस्सलाम वालेकुम, हम भी नाश्ते के बगैर नमाज पढ़ के शो में व्हाइट एश एंड लवली डी स्किन ब्यूटी क्रीम का शो सुन रहे हैं। चलिए जी, इससे तो आप मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, प्रोग्राम का नाम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए, व्हाइट एश की लवली लगाइए या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और नाश्ता करके जनाब ही लगाइए आइएगा क्योंकि नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोहम्मद ताहिर लुंड हमारे साथ मौजूद है। भाईजान आप हमें खैरपुर मीडिया से सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। आबिद परियास्ती हमारे साथ है और आपको भी हेलो कहा जाता है। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा हाजिर स्मार्ट हाजिर आए स्मार्ट भात आज मोबितू आए ता हाजिर आयो और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं चलें जी बिल्कुल गाना लिखाए लगाएंगे आपका गाना भी और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू। माय स्वीट बुआ जी आपको भी वेलकम कहा जाता है। नसरुल्लाह सुमरो आ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम तू खुशां माँ खुशां तू बुदाय खुशां तू। संजय जयपाल हमारे साथ हैं हाय। अजू नखा अलावा एस एन अरबानी वालेकुम अस्सलाम इन मुल्ला अलैहिस्सलाम अदर कहते ओ माय फेवरेट आरजे मेडम मुस्कान लाड़कना की पहचान कैसी आप और आपकी तबीयत कैसी।
1: It's time to commercial break.
2: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजने वाली फखरियाँ पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
3: पट्ठों के खिंचाव मोच
2: चोट पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा,
2: क्या आप आसानी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: आप दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ढाडो सुठो
4: जीए FM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो?
1: रोते में कौन अच्छा लगता है?
2: सबका वडी गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
3: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
2: अॼु पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
3: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
2: कॉन्टेक्ट
3: 03009317752
2: एंड 03132757 5780 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर।
3: तमाम से महफूज मुस्तकबिल ऐं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब। 44 सालन जो तजुर्बो, हजारें मरीज तो एतमाद। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 साल की वसी तजुर्बे से हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन की पथरी, बवासीर, बेऔलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत की तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराहम करे रहा आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, नए पिंडवारी पुल के सामू, PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप के विच में। टाइमिंग छंछर का खमीस, सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। अपॉइंटमेंट ऐं वधिक मालूमात लाए हींअर ही राब्तो करियो 03-26-22-00-440।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, तो नेचुरल अज़ा से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं तो उनका इस्तेमाल कुछ और ही वखरा हो जाता है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आप लोगों को बताएंगे कि आप YTH के तमाम प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। बस आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो वो आप लोगों के स्किन के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि अगर आपके चेहरे पर एक्नी का मसला है तो आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई फेयरनेस क्रीम चाहिए जो कि हम लगाएं तो हमारी स्किन जो है वो भाई ग्लो भी आता रहे, हमारी स्किन की हिफाजत भी होती रहे, तो आपके लिए YTH लवली क्रीम है। अगर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो आपके लिए YTH ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप किसी अच्छा सा सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छे से सोप की तलाश में, तो YTH का ब्यूटी सोप आपके लिए मौजूद है और साथ ही साथ YTH का आपको फेस वॉश भी मिल रहा है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ना मिलने की सूरत में बिल्कुल जी आप लोगों को नंबर्स भी बताए जाते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं। आप लोग बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं, वहां से मालूम मिल रहे हैं तो बढ़िया, नहीं मिल रहे तो फिर आपने परचेज करने के लिए नंबर्स के ऊपर रابطہ करना है। और नंबर के ऊपर रابطہ करते साथ ही ये फायदा हो जाएगा कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर YTH के तमाम प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो नंबर से जरा नोट कीजिएगा, ओके जी। पहला नंबर है 03-27-38-4309। दूसरा

का नंबर है 03125025907. बिल्कुल सुना, जल्दी से इन नंबर्स के ऊपर रहा कीजिए अपनी जरा करीबी जनरल स्टोर पर वाइट एज की तमाम प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते जाइए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बताती चलूँ

कि अगर आप बिल्कुल सही, अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूरी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूरी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती तो बढ़ेगी। और एक मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं तो व्हाइटिश ब्यूरी क्रीम जो है इसको नेचुरल अजा से तैयार किया गया है, जैसे कि इसके अंदर आपको एवोकाडो मिलेगा, एलोवेरा मिलेगी और मिल्क मिलेगा। ये तमाम चीजें जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप जब इस्तेमाल करेंगे व्हाइटिश ब्यूरी क्रीम तो आप लोगों की स्किन फ्रेश हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन जो है वो जरा निखरना स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपके जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। क्या की जल्द को नरम मुलायम और ताजा बनाने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे, बेरोन की ये सारी चीजें कम होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि आपकी जल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खास अज्जा आपकी जल्द की हिफाजत करने के लिए और कुदरती खूबसूरती को उजागर करने के लिए। रोजाना अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम को तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी और आप एहसास आपको हो जाएगा कि वाकई आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइटिश का ब्यूटी सोप भी मिल रहा है एंड फेस वॉश भी मिल रहा है। तो सोप जो है वो भाई व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की तरह ही है, यानी कि उसको बिल्कुल सेम टू सेम डिटो कॉपी बनाया गया है। लेकिन अगर हम व्हाइटिश के फेस वॉश की बात करते हैं तो वो वाइटामिन सी से तैयार किया गया है। और व्हाइटिश का वाइटामिन सी वाला फेस वॉश आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन के ऊपर वाइटामिन सी की कमी होती है। तो वाइटामिन सी की कमी हो या वाइटामिन ई की कमी, ये दोनों जो वाइटामिन्स की कमी है ना, ये व्हाइटिश का फेस वॉश पूरे कर देगा। और ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि आप लगाएंगे तो कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। उसके अलावा अगर आप अपने चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए जनाब व्हाइट एज की लवली क्रीम भी मौजूद है। और व्हाइट एज की लवली क्रीम की अगर हम जाने बात आते हैं तो ये एक वाइटामिन्स का भरपूर फार्मूला है। इसके अंदर 30 वाइटामिन्स के कैप्सूल्स ऐड किए गए। ये एक फेयरनेस फार्मूला है जैसे आपके घर के सारे लोग लगा सकते हैं, यानी कि आपके घर में बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई व्हाइट एज लवली क्रीम का फायदा उठा सकता है। तो बिल्कुल जी, जिस चीज का फायदा उठाना बनता है उसका फायदा उठाइए और व्हाइट एज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ वाइटामिन्स का फायदा है बल्कि ये इसके अंदर जो है ना, यानी कि व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन का फायदा भी मिलेगा, यानी कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। तो लाजमी तौर पर आपने व्हाइटिश लवली क्रीम का यूज करना है। आप किसी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी काम करते हैं, बस आप उठते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं और व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और आप चुटकियों में रेडी हो जाते हैं। इतना परफेक्ट वाला प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपकी खूबसूरती तो बढ़ेगी लेकिन आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी सूरती की जमानत है। ट्राई कीजिए और हसीन सा लुक हासिल कीजिए। अच्छा, नहीं मिल रहे तो जो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं आप भी, तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर आप रابطہ करते रहिए। और उसके साथ साथ आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर जब अवेलेबल करा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे और वहां से आप आराम से व्हाइटिश के तमाम प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल प्रोग्राम में ये पूछ लिया था, आप मुझे बताएं अगर आप लोगों को चांस मिल रहा हो किसी एक ऐसी सेलिब्रिटी से अपनी जिंदगी को, लाइफ को स्विच करने का, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी लाइफ से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे बताएं वो कौन सी सेलिब्रिटी होगी जिससे आप अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहेंगे, वो आपकी लाइफ में आ जाएगी और आप उसकी लाइफ में चले जाओगे। बताएं मुझे जल्दी।

पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। नवाबा टॉपिक ही फॉलो करना पड़ता है, ये कौन सनी दिमाग है। मोहम्मद ताहिर लंड भाई कहते हैं गुड टॉपिक, मेरा फेवरेट है जी दानिश तैमूर। ओके, दानिश तैमूर से अपनी जिंदगी जरा तब्दील करना चाहेंगे, क्या बात है। और हमारे साथ है संजीव जयपाल भाई, हेलो। मूसा कोरी के दी असान तांची जिंदगी तब्दील कर नक्यो बाबा नक्यो। सईदा बुखारी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और आप जल्दी से बताइए मुझे छोड़ के। और सईदा बुखारी की दी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा जनाब, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुमा में। और कहती है आप, अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब इतने प्यारे लोग इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं तो भाई सच्ची बताऊं बहुत खुशी होती है, तो थैंक यू सो मच सईदा बुखारी। और सईदा बुखारी लिखती है कि तन्हा इंसान की तन्हाई में खलल डालकर उसे दोबारा तन्हा कर देना है, ये चीज थोड़ी समझ नहीं आई। नसरुल्लाह भाई कहते हैं नालो सफा नंडो आ शो जो न बाबा नंडड़ो ना है।

बट नहीं तुम्हारे गरीब होती है ये टॉपिक आंसर. सही है भाई, सही है, ये भी अच्छी बात है. मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से भाई जान आपको वेलकम कहा जाता है. ऐसे कहती है जो बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग में मसलो आ शायद सखर ते शो कनेक्ट ना है. सखर आ रहा तो सही नता लायो.

नहीं भाई, चल तो रहा है। आप सुन रहे हैं व्हाइटेज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए, क्योंकि ये आप लोग डिजर्व करते हैं। अक्सर का देखा जाए तो आप लोगों की खूबसूरती जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रख रही होती है। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आप लोगों का अच्छा दिखना बहुत मायने रखता है, तो अपनी स्किन का ख्याल कीजिए और व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। चाहे वो व्हाइटेज ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइटेज लवली क्रीम हो, व्हाइटेज ब्यूटी सोप हो, या फिर व्हाइटेज फेस वॉश ही क्यों ना हो। और जी नहीं मिल रहे तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। रिजवान अली हमें सुन रहे हैं। हेलो, कहते गुड शो, थैंक यू। एसन कहते हैं टॉपिक असां की पांची जिंदगी भली या बा मानो सिर्फ दिखाओ कंदा आए ने, पर हकीकत कुछ भी होंदी है। बिल्कुल ता सही था। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं जिसकी लाइफ परफेक्ट हो। मैं एक ऐसी लाइफ जीना पसंद करूंगा जो सुबह उठे तो उसके दिमाग पर कोई जोर या परेशानी ना हो, सेहत बिल्कुल फिट हो, लोगों की लाइफ से कोई लेना देना ना हो। बाकी बहुत बातें हैं लेकिन छोड़े छोड़ना ही तो नहीं चाहते।

देखते चौथा वैसे निठू बनी तो मुझे लाइफ काफी बेहतर आओ छो नागन से बेड में हथ भेजा यानी सब तब क्या बैठा है आज कह सकते हैं अब्दुल रजाक बलोच भाई हमारे सारे दादू से आप हमारा शो सुन रहे हैं खुश आमदीद कहते हैं ममताज की थी अदी अज असाला भी सॉन्ग लाए जो मास्टर मंजूर जो बिल्कुल मास्टर मंजूर तांके बुधराइंदा से प्यारा बात आंजो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया

उसको लाइक और शेयर कीजिए। और स्मार्ट भाई कहते हैं कि मुखे सब चवन था तो में वाइटामिन जी कमी आ केड़ो वाइटामिन बुधायो ताके बुधाय ता जो ना वाइटामिन जी कमी किया पूरी थी। वैसे वाइट इज लवली क्रीम जेका ने एनर्जी अंदर ट्री है वाइटामिन का कैप्सूल पहले था सो तमा जी जेका भी कमी आ वाइटामिन जो पूरी थी वेनी बस तमा वाइट इज लवली क्रीम जो इस्तेमाल कंदा था पोए। अच्छा ये हमारे साथ ही रुखसार मरी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आपी क्या हाल है आपके शो सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है और सॉन्ग प्ले करें मैं कोशिश करती हूँ और आप हमें सुन रही हैं मीरपुर खास से खुश आमदी। हिदायतुल्लाह कहते हैं माशूक शर की लाइफ एक्सचेंज करता टॉपिक आंसर क्या बात है क्या बात है। इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद कहते हैं मक्का पाक से सलाम एम आरजी वालेकुम अस्सलाम सर और दुआ में याद रखिएगा सर कब वापस आ रहे हैं सर। लोग और हम सब आपको मिस कर रहे हैं प्रोग्राम में।

0: बिल्कुल सही नंबर मैं आपको बता रही हूँ, बस आपने डायल करना है, ठीक है? सो बिल्कुल आपने नंबर डायल करना है 03-27-38-4309 या ये नंबर बंद हो तो दूसरा नंबर ट्राई कर सकते 03-12-50-25-907 ये नंबर भी डायल कर सकते हैं. ओके जी, नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी तमाम वाइटेज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए. अवेलेबल होंगे तभी तो आसानी होगी ना आपको परचेज करने में, और आप जाएंगे बस परचेज करके आएंगे. तो जल्दी जल्दी से वाइटेज के तमाम प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए. और उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में आज आपने नहीं बताया, तो मैं बस वही सोच रही थी कि आप लोगों को डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के बारे में बताएं. अगर आप लोगों के चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा आ चुके हैं भाई, एक्ने तो डाढ़ा मतलब एड़ी कड़ी प्रॉब्लम आई ना जेका मतलब असाई दिल चुनी है, या अगर प्रॉब्लम असाई लाइफ में अची वया इन का छुटकारो हासिल करण तमाम घणो मुश्किल थी वेंदो आए. आई तमाम अगर इन प्रॉब्लम में फासी वया हो तो तमाम की डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जेको घणी हेल्प कंदो, सफा जबरदस्त क्वालिटी जो आए. आई डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जेको ही मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार थियल आए. बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जेको जड़ियुनि बूटियुनि सां एड हिन जे जड़ी अंदर न जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तयार थियल आहे मेडिकेटेड फार्मूले सां. ऐं तव्हां जी एक्ने ट्रीटमेंट कंदो, तव्हां जा न सिर्फ़ चेहरे जा एक्ने ख़तम कंदो बल्कि एक्ने जा निशान हुजनि, ब्लैक पोट्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, ब्लैक हेड्स आहिनि, एक्ने कहिड़ी बि साइज़ जो आहे, एक्स्ट्रा ऑयल आहे, या फिर कोई चोट जो निशान आहे, को सड़न जो निशान आहे, को धक जो निशान आहे, इहे सभु चीज़ूं ख़तम थींदी, तव्हांजी स्किन थी वेंदी क्लियर, बेदाग ऐं सफ़ा गोरी गोरी. सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के हणण जा तरीक़ेकार इहे आहिनि त तव्हां हिन खे सुबुह जो बि लॻाईंदा ऐं राति जो बि लॻाईंदा, ॿ टाइम तव्हां लॻाए सघो था. ऐं लॻाइण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो, ठीकु आहे? क्लीन फेस हुजणु लाज़मी आहे ऐं तव्हांजा हथ बि क्लीन हुजणु लाज़मी आहे. सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अगरि तव्हांजे चेहरे ते सफ़ा घणा दाणा आहिनि, यानी कि खोड़ सारा दाणा आहिनि, स्किन ते घणा दाणा हूंदा आहिनि, उहो टे दफ़ा लॻाए सघे थो. बाक़ी नॉर्मल स्किन ते दाणा आहिनि, नॉर्मल कोई निशान तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, त पोइ तव्हां ॿ टाइम जेको आहे न उहो लॻाए सघो था. सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तव्हां लॻायो बाबा, पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो, तव्हां न रखंदा त केरु रखंदो. सो डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे, उन खां अलावा वाइट एज लवली क्रीम बि आहे. डॉक्टर पिंपल ट्यूब लॻाए चेहरे जा एक्ने ऐं निशान ख़तम करे पोइ तव्हां वाइट एज लवली क्रीम लॻायो, आए हाए मज़ो अची वेंदव. अच्छा चलो मोहिड़ा, एॾा मतिलब छो तव्हांखे एक्ने वणंदा आहिनि, एक्ने कंहिंखे वणंदा आहिनि, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में इहा घटि ईंदी आहे नसरा बा. ऐं तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमालु कयो बाबा, हिननि एक्ने खे ख़तमु कयो, न आहिनि हूंदा एक्ने भला. अगरि एक्ने जो तव्हां ख़ात्मो न कंदा न अॻिते हली तव्हांखे ॾाढो नुक़सानु ॾींदव, ऐं जा जेके निशान तव्हांजे चेहरे ते अची वेंदा न उहे सफ़ा कॾहिं बि न वेंदा. सो तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमालु कयो, पंहिंजे चेहरे जे एक्ने जो ख़ात्मो कयो ऐं पंहिंजी स्किन खे सफ़ा क्लियर बणायो, गोरो बणायो ऐं चिटो बणायो. सो बिल्कुल ई वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांखे ईज़िली हर जॻह था मिली वेंदा. सो वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, परचेज करियो, इस्तेमालु करो ऐं न मिलनि था त हिन नंबर ते राबितो कयो जेको तव्हांखे ॿुधायो वञे थो. बिल्कुलु सुञा प्रोग्राम में हाणे टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदो. वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, साॾे न वेंदासीं तव्हांखे छॾे बाबा, तव्हां हिते वेठा हुजो, मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.
1: नौ शहरों,
2: मीरपुर खास,
1: लाड़काना,
2: सक्खर,
1: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज,
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़.

भर में जारी छिटाण मिस्र ताईं पहुची वई। मिस्र बंदरगाह ते ड्रोन हमलो, ब टैंकर तबाह। परडे॒ही मीडिया मूजिब मिस्र बंदरगाह दमयत ते ड्रोन हमलो थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में अमेरिकी बेड़ी बेड़े समेत ब बेड़ा मुतासिर थिया आहिनि। बंदरगाह ते अमेरिका जे फ्लोटिंग टैंकर खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। ईरानी शहर अहवाज़ बोश शहर बंदर अब्बास ऐं कश्त खे निशानो बणायो वियो। कश्त में अमेरिकी हमले जे नतीजे में 3 शहरी शहीद, 2 ज़ख़्मी। ईरान जे बि अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते मिज़ाइल हमला। अमेरिकी फ़ौज मूजिब विच ओभर में अमेरिकी फ़ौजनि ते हमले जे जवाब में ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। ईरान जे बि अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते हमलो। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर जूं अमेरिकी सदर ऐं नायब सदर सां मुलाक़ातूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो ख़ासि पैगाम बि पहुचायो। विच ओभर में जारी छिकताण ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त इराक मां वेड़ा ग्रुपनि सऊदीअ ते हमिलो करे हद पार कई, जंहिं सबबि दिफ़ा में इराक अंदर कार्रवायूं कयूं। इराक में कयल कार्रवाईअ जो मक़सदु जंग या छिकताण में वाद न आहे। सऊदी छिकताण में वाद बाद ॻाल्हियुनि ज़रिए छिकताण जो ख़ात्मो चाहे थो। ईरानी क़ौम नाइंसाफ़ी ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ कॾहिं बि कंध न झुकाईंदी। असां दुश्मन ख़िलाफ़ मज़हमत जो नओं मिसाल क़ाइमु कयो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त ईरानी क़ौम पंहिंजे शहरनि ते ज़ुल्म नथी करे सघे। ईरानी क़ौम दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहद ऐं साबित क़दम रहंदी।

डूंगर डुखो यंके दिलासा दे जन घणो कुछ जे तिन के जिना ता हो त वन तो की संगात में पर पेर डुखो ही

0: जो शहर बहजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
1: GFM 90.8

उम्मीद अब्बास जी आवाज में तमाम सोनो खूबसूरत गानों जो असा फरमाइश ते हलायो आहे बाबा तमाचा मैसेज आए नहीं पैनल ते अगर असा आचू था पैनल ते तमाचा खोड़ सारा मैसेज जमा थी वया है और ये हमारे साथ अब्दुल्ला महर मौजूद है अब्दुल्ला महर भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत बेहतरीन चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद है आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है गाना आपका लगा देंगे जी और ये हमारे साथ अल्लाह रखियो मेमन फ्रॉम लाड़काना अस्सलाम वालेकुम उलैल इस्लाम अदर सिद्रा मुस्कान जी आपका शो और आपकी आवाज ब्यूटीफुल है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे सलामत रखे आमीन मुरीद अब्बास का कोई भी गाना लगाइएगा डेडिकेट मेरे दोस्तों को और सब सुनने वालों को थैंक यू ओके जी अल्लाह रखियो मेमन भाई आपको वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ एक गाना सुनिए अपना ओके जी मकसूद मलाह हमारे साथ हैं आप हमारा शो सुन रहे हैं गाना लगाने की कोशिश करेंगे इरफान ककरान हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम शो तुम्हारे पसंद अच्छी पयो सो थैंक यू वही दली कहते हैं टॉपिक सेलिब्रिटी किसी की जिंदगी इतनी खास नहीं लगती बस अपनी जिंदगी में मजा आए चलो ये भी अच्छी बात

आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एशियन टीज इन ब्यूटी शो, यहाँ पर हमारे साथी हैं सलाम अलैकुम आपी। मेरा जवाब ये है कि मैं शाहरुख खान की जिंदगी जीऊंगा और पहली बार शामिल हुआ हूँ, तो आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्टर मंजूर का ये वाला गाना लगाइएगा। अच्छा भाई, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आपका गाना, ये अगर मुझे मिल गया तो लगा देते, नहीं तो मास्टर मंजूर का गाना तो हम वैसे भी सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आप पहली मरतबा इतनी जल्दबाजी में कि अपना नाम ही नहीं लिखा, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ है, सिस्टर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, वीआईपी प्रोग्राम, सो नाइस ऑफ यू। सिस्टर फायजा का गाना लगाएगा नया वाला, थैंक्स फरमाइश अली रजा भंड। ओके ओके भाई। और है जी रियाज महर, जो सलाम कबूल हो जे। वालेकुम अस्सलाम रियाज महर। मकसूद मरा कहते हैं मैं बहुत डरता हूँ। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। मकसूद कहते हैं जवाब है आमिर खान की लाइफ, ना करें भाई ना करें। और ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आप कैसी हैं? विलेज मोला सेंट से उदास इमाम बख्श कह रही हो, प्लीज पूरा एसएमएस पढ़ना, मेरी जिंदगी तो बदलेगी नहीं और जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अच्छा ठीक है, क्योंकि आपको सब पता है। और कहते हैं आपकी आवाज सुनो वो ही बस मेरे लिए काफी है। सॉन्ग लगाएगा शमन मिराली का, तूजा वार खुलिया हाणी वाओ, गुले न गुले लगे न लगे अलाइचा। गाना चल गया खुद ही। अच्छा ये नौशीन हमारे साथ कहती है आई एम योर लिसनर, 2 सालों से पहले बार आपका शो सुन रही हूँ, प्लीज गाना लगाइएगा खींच मेरी फोटो। तो मेरी जान ये गाना जो है वो इंडियन गाना है, तो हम इंडियन गाने नहीं लगा दे, आप कोई पाकिस्तानी गाना बोले लगा देते हैं।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करें आप लोग जो फेसबुक पर मौजूद है। अच्छा सजाद अली जमाली नवाब शाह से कहते सॉन्ग प्ले करें ममताज मोलाई पे सो डिठो थी माँ कोशिश क्या थी गानों हलायों था और ये मौजूद है सिद्धरा जी थितर मोरी से राजा हमीरचंद किशोर कुमार हीरा लाल अरबाब और राधूमर कहते हैं फरमाइशा पूरी नहीं करती हैं खाली आसरे देती हैं प्लीज प्ले असा लाए तू सियाणो थी वयो आ हाने दिसो ममताज मलाई जो फरमाइश जो सुनन माइकड़ो गानो हलाए वठूं था सो थैंक यू सो मच प्यारा भाऊ।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
4: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
3: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़्ब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे।
4: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध। जेकर उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा।
3: वाह, पोए अॼु ई वठींदसि।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।

जी डिंका वरी जिद्दी वाह वाह ॾाढो भलो गानो हुयो ॿुधो सी हुन खां अलावा ही हिकिड़ो गानो आहे असांजी लिस्ट में सो हिन खे ॿुधंदासीं वात पटिजी विया वरी अलाए छा छा सो अचो ॿुधूं था किशोर भाई लिखते हैं कि हमने कब कहा वो शख्स हमारा हो जाए हमने कब कहा वो शख्स हमारा हो जाए बस इतना दिख जाए जो आंखों का गुजारा हो जाए आए हाय

बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल देश की ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी दिसो। अच्छा मूसा कोरी भाई कहते वाह वाह वाह वाह वाह चुगानो होलाए था वर्दी। नसरुल्ला भाई कहते हैं शहर वयम तो फेस वॉश दिसा वठी इंदा मता मिली वने मिली वेंदो मिली वेंदो तमा लाजमी वठजो। अली डिनो शमरानी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मदीना मुनव्वरा सी, आप हमारा शो सुन रहे कहते कैसी हैं? मैं ठीक हूं जी, आप बताएं आप कैसे? अच्छा टॉपिक थे एफ क्यू, तू समझा ना बाबा यो असा कौन असा ने वड़ा भी कौन समझी सका। मां तमाम सोचने की कोशिश कई पर मुंजी सोच इतने कौन पहुंची। जेंजा तमा फेन आयो ना नालो तो ए साइंस स्टार्ट थी।

भई वीचारो किस्मत से फरमाइश कंदो आ सो न करे मान रखनो पंदो आ अनवर भाई के थी मु समझो सिद्रा सिद्रा पई टहक दे न न न माई हुई बिचारी अच्छा हैप्पी कहती आरजी आप हमसे सवाल पूछ रही है हम सब ने जवाब दिया अब आप बताएं आप सवाल का जवाब क्या देना

वैसे इहो कॾहिं कॾहिं मुंहिंजे ज़हन में इहो ख़्यालु ईंदो आहे, जॾहिं मूंखे लॻंदो आहे त बाबा मुंहिंजी लाइफ केतिरी मुश्किल आहे, केॾो कुझु डिफिकल्ट हले पियो मुंहिंजे ज़िंदगी में, ईअं कॾहिं कॾहिं मूंखे जॾहिं फील थींदो आहे, सो मां सोचींदी आहियां त ई हुन ई ज़िंदगी में जेकर ईअं हुजे, असां हलिया वञूं बसि ज़िंदगी एक्सचेंज करण जो सीन जेको हुजे ऑन हुजे, पोइ मां सोचींदी आहियां वरी कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे ॾिसंदी आहियां सोशल मीडिया ते, अॼुकल्ह सभु कुझु ॾिसो था खुलम खुल आहे, सो उन्हनि खे वरी ॾिसी करे असांखे महसूसु थींदो त बाबा हीउ त असां खां वधीक आहे, टट लॻो पियो आहे जाम, सो असांजी ज़िंदगी उन्हनि खां करोड़ भेरा भली आहे, ईअं न? बिल्कुलु सही, कहिड़े बि हाल में अलाह रखे बसि शुक्र अदा करणु घुरिजे। रिज़वान कहते हैं कि हर दर्द दिल दे जाया करो खामोशी के साथ, हम अपनों को नवाजिश ठहराया नहीं करते। वाह वाह, देश की ब्यूटी क्रीम भी बैठो बाबा। ममताज अली कहते हैं, चांद सा चेहरा, कातिल आंखें और रेशमी जुल्फे, देख के तेरे होंठ। अच्छा माशरम जो गानो तां बुधो नी, तां के पसंद आयो हो, सो थैंक यू सो मच तां से गड आयो। अब्दुल गफार भाई खुश आमदीद। हेलो अली मुर्तजा कहते हैं, अस्सलाम गुड आफ्टरनून, आऊं भी अच्छी वयम रिक्वेस्ट, हुआ कोन हलाइंदा वरी कंदम तो कुछ मानन के इतराज दिनो, सो शाम वारे शो में उधार रही यू डे। ओके ओके सही हाँ, माना तुम भी सजे प्रोग्राम जो माहौल समझी वे आयो, ये ना चाही सकजे तो। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं, ओके ओके, सो ही वारो गानो असा बुधोसी, हाणे असा ही वारो गानो बुधंदासी। कामी शाह जी आवाज़ में गानो अथव, मां भी अॼु ही पहिरियों दफ़ो गानो ॿुधो, ऐं गानो ॿुधण खां पोइ मूंखे लॻो बाबा ही मां पंहिंजे प्रोग्राम में छो न हलायो।

हक़ीक़त हूंदे मूंखे अहिड़ा गाना वणंदा आहिनि, भले दुख जा हुजनि कहिड़ा हुजनि, पर हुनजो म्यूज़िक भलो हुजणु घुरिजे, इहो शर्त आहे हिकिड़ो. अच्छा वरियाम हमारे साथ ही, हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड लवली सॉन्ग, थैंक यू वरियाम. अच्छा ये है, अब कहाँ जरूरत हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं. राम नोशीन सिद्रा मेरा सॉन्ग प्ले करो ना, जानी बताया तो इंडियन गाने

जाइए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सुट्टी मिट्टी लाइव की यहाँ पर ही गुजर। अरे कंबट शरीफ खां अली लाजवाब आए तमाम जो शो साइमा मंसूर जो गानो हलायो मुझो गानो तमाम की भा सुभाने बुधराइंदा छो त अज प्रोग्राम जो टाइम खत्म थियण ते पहुतो आहे।

राजा बक्तली सियाल भाई है लो। किशोर भाई कहते हैं कल शाम 5 बजे वाले शो जी लास्ट।

अच्छा वासु भाई आ चुके हैं, वासु भाई हेलो। अच्छा अली मुर्तजा कहते हैं चाचा चाचा खालिद अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, एक आप ही हो जो इस एज में भी। हाँ जी खुश मिजाज तो हैं चाचा वाके कहते असान जा कुराड़ा त इन उम्र में हाई बीपी जा पेशेंट असान या दवा बिल्कुल सही गाल कही।

एंजॉय कयो चाचा बिल्कुल मातां सां गॾु वारा कुराड़ा वाके रोगो कावड़ कंदा आहिनि उन्हनि खे बाबा ॿुधायो रेडियो मुंहिंजो प्रोग्राम जो ॾिसजोसि उन्हनि खे बि चाचे जहिड़ो करे छॾींदासीं।

सो बिल्कुल तव्हां बि अगरि अञा ताईं सोचो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन वती अथव त बाबा टेम कोन्हे जल्दी वञो वठी अचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से तव्हां अवेलेबल लाज़मी करायो वेंदे वेंदे तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदी वेंदी माण्हू नंबर अञा ताईं कोन डायल कयो आहे नंबर ते कोन राबितो करे सघिया नंबर नोट करे वठो

1250. Your number is 0332 7 38 4 3 0.

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: लाहौर में टे मार इमारत जो छितियों करण के नतीजे में फौत थलन जो अंग वधी 11 थी वियो जख्मी थल चार जणा अस्पताल मुंतकिल डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर जो चवण आहे त मलबे मां छह जणन के जिंदा बाहर कढियो वियो एक बार के मलबे में दबियल हुजण जे खदशे सबब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी इलाइके वासन मूजिब तूफानी बरसातुनि दौरान इमारत जी छित कमज़ोर थी वई हुई रात देर सां इमारत जी मथी छित किरण सबब हेठी ॿारनि जूं छितियूं बि किरी पियूं इमारत अंदरि टे भाइरनि जा ख़ानदान रहाइश पज़ीर हुआ टिनी ख़ानदान जा 15 भाती मलबे में दॿिजी विया

0: पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॿीहर इस्लामाबाद मुआदे ॾांहुं आणण जी भरपूर कोशिश करे रहियो आहे। ख़िते में सिक्योरिटी जी सूरताल अञा बि नाज़ुक आहे। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान ताहिर इंदराबी जी हफ़्तेवार ब्रीफिंग दौरान इज़हार। ताहिर इंदराबी चयो त असां अमरीका ऐं ईरान विच में जारी वेझ जे ख़ात्मे ऐं ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ थींदड़ समूरनि कोशिशुनि जी आजा कयूं था। ॿई धुरियूं सब्र ऐं सहप खां कमु वठनि। परॾेही तर्जुमान पारां सऊदी अरब ते इराक जी सरज़मीन तां कयल हमलनि जी बि मुज़म्मत। पाकिस्तान पारां 16,000 अफ़गाननि जी इंसानी बुनियाद ते मुल्क अंदरि रिहाइश वारे मुदे में वाध जो फ़ैसिलो। परॾेही आफ़िस जे तर्जुमान ताहिर इंदराबी हफ़्तेवार ब्रीफिंग दौरान ॿुधायो त इंसानी बुनियादनि ते 16,000 अफ़गाननि जे क़याम में वाध कई पई वञे। उन्हनि अफ़गाननि में बुज़ुर्ग, औरतूं ऐं ॿार शामिल आहिनि। तर्जुमान चयो त क़ानूनी वीज़ा या सफ़री दस्तावेज़ रखंदड़ कंहिं बि अफ़गान शहरी खे पाकिस्तान मां निकाली न ॾिनी वई आहे। IFRP तहत 99,000 अफ़गान शहरनि जे केसनि ते कार्रवाई कई पई वञे। अमरीका जा ईरान ते वधीक फिज़ाई हमला। बोशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा, केश ऐं कशम बेटन समेत केतिरनि हंधनि ते धमाका। अमरीकी सेंट्रल कमांड जो चवणु आहे त हमला ईरान जे गुज़िरियल ॾींहुं कयल मिसाइल हमलनि जे जवाब में कया पिया। हमलनि दौरान ईरानी पासदारनि इनकलाब जी फ़ौजी कमांड जे मर्कज़नि, मिसाइल ऐं ड्रोन ठिकाणनि, साहिली निगरानी वारे निज़ाम ऐं नेवल ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो। एक्स ते पंहिंजे बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड चयो त गुज़िरियल ॾींहुं ईरान विच ओभर में अमरीका जे फ़ौजी ठिकाणनि ते मिसाइल ऐं ड्रोन हमला कया हुआ।
1: This house supports in principle the establishment of an independent, impartial and suitably empowered truth commission as an institutional mechanism for the peaceful and lasting resolution of the present crisis.
2: Madaskara Bala polling station aap par dobara saaf o shwab polling pak army ki zare nigrani karwai jaye.
3: जो भी बयान इस करारदाद के हक में है वो हां कहें, जो मुखालिफ है ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। बटानी
0: आज़ाद कश्मीर जी कानून साज़ असेंबली बिलाल भुटो ज़रदारी जी तजवीज़ कयल ट्रुथ एंड रिकनसाइलेशन कमीशन जे क़याम वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मीरपुर डिवीज़न में चूंडुनि दौरान मुबैना धांधलियुनि ख़िलाफ़ पेश कयल ठहराउ बि मंज़ूर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जे सदर चौधरी यासीन बिलाल भुटो जी तजवीज़ कयल कमीशन जे क़याम लाइ ठहराउ पेश कयो। पीपल्स पार्टी जे जावेद इक़बाल मुबैना धांधलियुनि ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो। चौधरी यासीन ठहराउ पेश कंदे चयो त मुज़ाहिरीन कमीशन जे क़याम ताईं इस्टार्ज ख़तमु कनि ऐं हुकूमत बि वधीक कार्रवाइयूं न करे। पुरतशद वाक्यनि में अजल जो शिकार थियल शहरनि ऐं अहलकारनि जे वारसनि सां ॾुख ऐं हमदर्दी जो इज़हार। जावेद इक़बाल जे ठहराउ में मुबैना धांधलियुनि जी मुसम्मत ऐं इलेक्शन कमीशन खां धांधलियुनि जी जांच कराइण जो मुतालबो। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलोचिस्तान समेत मुल्क जी मजमूई सिक्योरिटी सूरताल बाबति ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी सदर खे ॿिन्ही सूबनि में अमन अमान जी सूरताल ऐं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जारी क़दमनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे मुल्क में चिटादार अमुन लाइ समूरी क़ौम पंहिंजी सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। सदर पारां दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेढ़ में पाक फ़ौज ऐं पुलिस समेत क़ानून लागू कंदड़ समूरनि इदारनि जी किरदार जी वाखाण। पंजाब जी CM मरियम नवाज़ सूबे जे वधीक 7 ज़िलनि में ग्रीन बस सर्विस जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे मरियम नवाज़ चयो त गुजरात, नारोवाल, कसूर ऐं शेखूपुरा में बि हाणे ग्रीन बसूं हलंदियूं। ग्रीन बसूं एयर कंडीशनड आहिनि ऐं उन्हनि में वाईफाई जी सहूलियत बि मौजूदु आहे। उन खां अॻु लेडी पुलिस ऑफिसर्स जी पासिंग आउट तक़रीब खे ख़िताब कंदे मरियम नवाज़ चयो त पंजाब सुठी हुकुमरानी ऐं औरतुनि खे नुमाइंदगी ॾियण जे मामले में बि ॿियनि सूबनि खां घणो अॻिते आहे। पंजाब जी ईंदड़ IG पुलिस में हिकु औरत हूंदी।

0: पाक नेवी जे जहाज पीएनएस तैमूर जो कामयाब ऑपरेशन उत्तर अरबी समुंड में फाथल बेड़ी के 29 मुहाणन के बचाए वो मुहाणन की बेड़ी ग्वादर का 120 नॉटिकल बेल परे दखण में इंजन खराब थियण सबब फांसी पई हुई बेड़ी में 11 पाकिस्तानी 8 ईरानी शहरी सवार हुआ पाक नेवी के अमले बेड़ी में फाथल मुहाणन के खाद खुराक तिबी इमदाद फराहम कई अंगू के इलाके खजीना बांडा में शहीद थियल 11 पुलिस अहलकार की जनाजे नमाज अदा कई वही आला ऑफिसर मकामी मानून की वे अंग में शिरकत जनाजे नमाज की अदायगी बाद मढ़ अबाड़न इलाक उबाणा वह डीपीओ तारिक हबीब मूजिब दहशतगर्दन की खजीना बांडा चौकी के हमले में डीएसपी सिटी दरिया खान समेत 10 अहलकार शहीद थी वह डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 22 अहलकार जख्मी भी थी पाया
1: मारिया ने हमें धमकियां दे के बुलवाया था और वो वाइज है मेरे पास है मारिया को माफी मांग लेनी चाहिए पूरे कानून को वो हाथ में ले रही है कपड़े एक दो शागिर्दों ने मेरे उतारे सब उन्होंने नहीं उतारे जो हमारी जो गलती हम वो अभी भी मान रहे फिर भी मानेंगे ये तो गलत है ना ट्रांसजेंडर ने क्योंकि ट्रांसजेंडर की कौन सी एसपी के साथ लड़ाई थी या किसी सरकारी अहदे से हमारी कौन सी दुश्मनी हो सकती
2: ये तो सिर्फ प्यार के भूखे होते इन पे इंजाम लगाए जा रहे मैडम मारिया करी जा रही है हम तो एसपी ऑफिस से ये गुजारिश हमें माफ किया
3: हमने उसने हमें ब्लैकमेल करके बुलाया हम आ गए सारे के सारे टिक्स करा दुनिया ने देखा
0: एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में वन ट्रा केस में नामजद ट्रांसजेंडर्स वाके जो जिम्मेवार मारिया सारियो के करार दी छो अदालत में पेशी के मौके से टाइम न्यूज से गालाइंदे ख्वाजा सरान चयो तो असा के मारिया सारियो ब्लैकमेल करे घुराया हो एसएसपी ऑफिस में असा जेको कुछ कयो वो मारिया सारियो के चवण ते कयो ट्रांसजेंडर्स चयो तो भंज ट्रा दौरान असा पंजा कपड़ा पान फाड़िया हुआ पेंजे अड़े अमल ते शर्मसार आयूं ऐं माफ़ी वठूं था असा के माफ़ कयो वञे

सिंध में मौसमियाती तब्दीली सबब एक पासे पानी की खोट तो बे पास बोड वाली सूरत हाल है। सरदारगढ़ वाले इलाके में पैं जमींदारी है उतें भी पानी की खोट है। ज़राअत वाले वजीर मोहम्मद बख्शबर जो खानपुर बहर में मीडिया से गालू सूबाई वजीर तालक अस्पताल खानपुर में ब वार्ड स्टोर रूम जो इफ्तताह भी किया। मोहम्मद बख्शबर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ हल्द एहतजाज बाबत लीडरशिप जो भी फैसलो की बेहतर होंगे।

ऐं भेटशाह में सिंध जे सरबोर शाइर लाखणे लतीफ़ जे 280 उर्स जूं तकरीबूं जारी। एच टी सोली हाल में लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस जारी। चइनी सूबनि मां आयल अदीब दानिश्वर शाइर ऐं मुहक़िक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे फ़िक्र बाबति मकाला पेश करे रहिया आहिनि। उर्स तकरीबनि जे ॿिए ॾींहुं मलाखड़े घोड़नि जी डोड़ ऐं राग रिहाण जूं तकरीबूं थियनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GFM 90.8।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: लाहौर में टे बार इमारत जो छितियों करण के नतीजे में फौत थियण जो अंग वधी 11 थी वियो जख्मी थियल चार जणा अस्पताल मुंतकिल डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर जो चवण है मलबे मां छहनि जणनि खे जिंदा बाहर कढियो वियो एक बार के मलबे में दबियल हुजण जो खदशे सबब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी इलाइक़े वासियुनि मूजिबि तूफ़ानी बरसातुनि दौरान इमारत जी छित कमज़ोर थी वई हुई राति देरि सां इमारत जी मथी छित किरण सबबि हेठियुनि ॿारनि जूं छितियूं बिकरी पियूं इमारत अंदरि टे भाइरनि जा ख़ानदान रहाइश पज़ीर हुआ टिन्ही खानदाननि जा 15 भाती मलबे में दॿजी विया

0: पाकिस्तान अमरीका ईरान के बीहर इस्लामाबाद मुआहदे आण की भरपूर कोशिश कर रो है। खिते में सिक्योरिटी की सूरताल अजा भी नाजुक है। परदेही वजारत के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग दौरान इजहार। ताहिर इंद्राबी अमरीका ईरान विच में जारी वेड़ के खात्मे गाल बहाली लाइंदड़ समूर कोशिशों की आजा क्यों था। बिन्हीं धुरन सब्र सहप का कम वन परदेही तर्जुमान पारा सऊदी अरब से इराक की सरजमीन त कल हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान पारा 16,000 अफगान की इंसानी बुनियाद से मुल्क अंदर रिहाइश बारे मुद्दे में वाजिब फैसलो। परदेही ऑफिस के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी हफ्तेवार ब्रीफिंग दौरान बुधायो तो इंसानी बुनियाद से 16,000 अफगान के क्याम में वाद कई वे उन अफगान में बुजुर्ग औरतू बार शामिल हैं। तर्जुमान तो कानूनी वीजा या सफरी दस्तावेज रखंदड़ कें भी अफगान शहरी के पाकिस्तान में निकाली न डनी वही है। IFRP तहत 99,000 अफगान शहर के केसन से कार्रवाई कई पी वे। अमरीका जहा ईरान से फिजाई हमला बो शहर बंदर अब्बास अबू मूसा केश कशम बेटन समेत केतर ही हंधन से धमाका। अमरीकी सेंट्रल कमांड के चवण है हमला ईरान के गुजरल ढी कल मिसाइल हमलों के जवाब में क्या गया। हमलों दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब की फौजी कमांड के मरकजन मिसाइल ड्रोन ठिकाणन साहली निगरानी वे निजाम नेपल ठिकाणन के निशानों बनाया वो। एक्स से पैं बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड तो गुजरल ढी ईरान विच ओभर में अमरीका के फौजी ठिकाणन से मिसाइल ड्रोन हमला क्या हुआ।
1: This house supports in principle the establishment of an independent impartial and suitably empowered truth commission as an institutional mechanism for the peaceful and lasting resolution of the present crisis.
2: Madaskara Bala police station ha par dobara saaf shaffaf polling pak army ki zar nigrani karwai jaye.
3: जो भी बरान इस करारदाद के हक में है वो हां के हैं, जो मुखालफ है ना के हैं। करारदाद मंजूर की जाती है। बढ़ाने
0: आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली बिलाल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ कल ट्रुथ एंड रिकनसाइलेशन कमीशन के क्याम वो ठहराव मंजूर कर वरतो। मीरपुर डिवीजन में चूंडन दौरान मुबैना धांधलन खिलाफ़ पेश कल ठहराव भी मंजूर। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासिन बिलाल भुट्टो की तजवीज़ कल कमीशन क्याम लाइ ठहराव पेश कर। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल मुबैना धांधलन खिलाफ़ ठहराव पेश कर। चौधरी यासिन ठहराव पेश कहते तो मुजाहरीन कमीशन के क्याम तीन इंतजाज खत्म कन हुकूमत भी कार्रवाई न करें। पुरतशद वाक्यन में अजल के शिकार थल शहर अहलकार के वारसन से दुख हमदर्दी का इजहार। जावेद इकबाल के ठहराव में मुबैना धांधलन की मुसम्मत इलेक्शन कमीशन का धांधलन की जांच कराने का मुतालबो। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान समेत मुल्क की मजबूती सिक्योरिटी सूरताल बाबत गाल मोहसिन नकवी सदर के बिन्हीं सूबन में अमन अमान की सूरताल दहशतगर्दी खिलाफ़ जारी कदम बाबत ब्रीफिंग दिनी। सदर आसिफ अली जरदारी तो दहशतगर्दी के खात्मे मुल्क में जितादार अमुन लाए समूरी कौम पैंजी सिक्योरिटी फोर्सेस से गड़ बीठल है। सदर पारा दहशतगर्दी खिलाफ़ वेड़ में पाक फौज पुलिस समेत कानून लागू कदड़ समूर इदार की किरदार की वाखाण।
4: अभी तक पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कभी एक खातून आईजी नहीं आई। मैं चाहूंगी आईजी साहब कि आप रास्ता हमवार करें कि अगली आईजी भी खातून हो इंशाल्लाह। अजमा आप क्यों हंस रही है? कितनी जरूरत है इस बात की। अगर एक खातून पहली वजीर आला बन सकती है, एक खातून जस्टिस बन सकती है, तो एक खातून आईजी भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। यही अजम लेके आज आपने अपने घरों को जाना है।
0: पंजाब पुलिस की ईंदड़ आईजी एक औरत होजन घुर्जी। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की आईजी पंजाब की हिदायत। लाहौर में लेडी पुलिस ऑफिसर्स की पासिंग आउट तकरीब के खिताब कहते मरियम नवाज के तो पंजाब में एक औरत सीएम बनजी सके थी तो कोई आईजी छो न थी बनजी सके। पंजाब सुखी हुकुमरानी औरतों के नुमाइंदगी दियण के मामले में भी बेन सूबन का घणो अगते है। मरियम नवाज सूबे के 7 जिलों में ग्रीन बस सर्विस को इफ्तिताह कर छोड़ो। तकरीब के खिताब कहते मरियम नवाज तो गुजरात नारवाल कसूर शेखपुरा में भी हाँ ग्रीन बसू हलंद ग्रीन बसू एयर कंडीशनड है उन्होंने में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत वेझो वी अग अगवा कल छह पोहत लाश थे सूबाई घर वजीर के मीडिया मामलन बाबत मुआवन बाबर यूसुफजई जो चवण है त शहीद कल छह मजदूर गोलन से परूण थल लाश मिलिया बी अग तुर्बत इलाके नासराबाद वेझो सत मजदूर के अगवा कर वो हो एक पोहत के थदे से गोलू हणी मारे वो हो शहीद कल पोहतर में चैन जो तालुक पंजाब और बिन जो तालुक खैबर पख्तूनख्वा से कराची पुलिस मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ दाखिल कत्ल केस के कत्ल बल सबब में तब्दील कर जांच ऑफिसर केस जो हतमी चालान अदालत में जमा कराए छो चालान की स्क्रूटनी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मेथलो और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आरिफ सीताई कई केस में कत्ल के कलम के कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म किया वो चालान में चाहिए तो केमिकल रिपोर्ट में साबित थे तो मकतूल जानायल शख्स जो मौत नशे सबब थो फोत थे शख्स की सुणप नी सी डीएनए जांच भी नी हुई अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ बगदादी पुलिस कत्ल जो केस दाखिल किया हो लाश मिलने के एक महीने बाद कत्ल की एफआईआर दाखिल कई हुई पाक नेवी के जहाज पीएनएस तैमूर जो कामयाब ऑपरेशन उत्तर अरबी समुद्र में फाथल बेड़ी के उणवी मुहाणन के बचाए मुहाणन की बेड़ी ग्वादर का 120 नॉटिकल मेल परे दखण में इंजन खराब थे सबब फांसी पी हुई बेड़ी में 11 पाकिस्तानी 8 ईरानी शहरी सवार हुआ पाक नेवी के अमले बेड़ी में फाथल मुहाणन के खाद खुराक तिबी इमदाद फराहम कई अंगू के इलाके खजीना बांडा में शहीद थे 11 पुलिस एहलकार की जनाजे नमाज अदा कई हुई आला ऑफिसर मकामी मानून की वे अंग में शिरकत जनाजे नमाज की अदाय की बाद मण अबाण इलाक अमाणा वह डीपीओ तारिक अबीब मूजिब दहशतगर्दन की खजीना बांडा चौकी से हमले में डीएसपी सिटी दरिया खान समेत 10 एहलकार शहीद थी पाया डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 22 एहलकार जख्मी भी थी पाया हैदराबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत एसएसपी ऑफिस में भजन राह वे केस में मारिया सारियो 14 ट्रांसजेंडर्स की अबूरी जमानत मंजूर कर वरती मारिया सारियो ट्रांसजेंडर्स की चयन दिन अबूरी जमानत मंजूर कई हुई जांच ऑफिसर इनायत कुरेशी बुधनी दौरान मारिया सारियो केस की जांच लाइ पेश न पई थे मारिया सारियो तोड़े ट्रांसजेंडर्स पिंकी आडियो फॉरेंसिक लाइ आवाज को नमूनो दियण लेबॉरेटरी हलण लाइ तैयार ना मारिया सारियो अदालत 50,000 रुपये के मुचलकन एवज जमानत मंजूर कई

0: मारिया ने हमें धमकियां दे के बुलवाया था और वो वाइज मेरे पास है।
1: मारिया को माफी मांग लेनी चाहिए, पूरे कानून को वो हाथ में ले रही है। कपड़े एक दो शागिर्दों ने मेरे उतारे, सबों ने नहीं उतारे। जो हमारी जो गलती हम वो अभी भी मान रहे फिर भी मानेंगे, ये तो गलत है ना। ट्रांसजेंडर ने, क्योंकि ट्रांसजेंडर की कौन सी एसपी के साथ लड़ाई थी या किसी सरकारी अहदे से हमारी कौन सा दुश्मनी हो सकती
2: है? ये तो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, इन पे इंजाम लगाए जा रहे हैं। मैडम मारिया करी जा रही है, हम तो एसपी ऑफिस से ये गुजारिश हमें माफ किया।
3: हमने उसने हमें ब्लैकमेलिंग करके बुलाया, हम आ गए सारे के सारे प्रोटेक्ट करा, दुनिया ने देखा।
4: एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में बनिड्रा के सभी नामजद ट्रांसजेंडर वाके जो जिम्मेवार मारिया सारियों के करार दी छो। अदालत में पेशी के मौके से टाइम न्यूज से गलंदे ख्वाजा सरान तो असंके मारिया सारियों ब्लैकमेल कर घुराए हो। एसएसपी ऑफिस में असा जो कुछ कयो वो मारिया सारियों के चवण से कयो। ट्रांसजेंडर चो तो भनिड्रा दौरान असा पंजा कपड़ा पान फाड़िया हुआ, पेंजे अड़े अमल से शर्मसार आयो, माफी वटूं था, असा माफ क्यों वे।

गुज्जू भरसां सीआईए पुलिस की कार्रवाई दौरान वीगो गाड़ी कल्टी थी, सिम नाले में किरी पई। जवाबदार के पकड़ की कोशिश दौरान एक अहलकार मुबैना तौर बुनी फोत। सीआईए पुलिस जो चवण है तो पीछो करण से मनचात से भरल वीगो गाड़ी सिम नाले में किरी पई। जवाबदार के पकड़ दौरान सिम नाले में टप्पो डींदड़ पुलिस अहलकार मुबीन जाखरो बुनी शहीद थी। एक जवाबदार के गिरफ्तार किया वो। अहलकार मुबीन जाखरो जो लाश सिविल अस्पताल ठट्टो मुंतकिल। पुलिस अहलकार के वारसन जो चवण है तो मुबीन जाखरो सिम नाले में बुनी न तो सके, मामले की जांच कराई वही।

ऐं भिटशाह में सिंध जे सरमोट शाइर लाखणे लतीफ़ जे 284 और सॼूं तकरीबूं जारी। एस टी सोली हाल में लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस, चइनी सूबनि मां आयल अदीबनि, दानिश्वरनि, शाइरनि ऐं मुहक़िक़नि पारां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे फ़िक्र बाबति मकाला पेश। अॼु शाम राग रिहाण जी तकरीब बि थींदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
2: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
1: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकड़ाहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे।
2: रुगो मुतासिर हंद ते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध, जेकरे उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा।
1: वाह, पोए अॼु ई वठींदस।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। सुबुह

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Chaudhari Rok Jai. 2 August se pehle फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाप्त करें, पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स और बैलेट अकाउंट्स अवाम के सामने लेकर आए, तमाम पोलिंग मटेरियल और इलेक्शन रिकॉर्ड्स सामने लेकर आए। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो, अगर चोरी नहीं तो क्यों डर रहे हो, अगर डाका नहीं तो पीछे क्यों हट रहे हो। इलेक्शन कमीशन अपना क्रेडिबिलिटी बहाल करे। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद, क्या पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी मफाद, क्या पाकिस्तान और कश्मीर का कौमी मफाद ज्यादा अहमियत रखते हैं या नून लीग का जाती सियासी मफाद ज्यादा अहमियत रखती है। एहतजाज करे, उधर भी एहतजाज हो, यहां भी एहतजाज हो, कब मजा आएगा आपको। वोट चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली

0: deserve an election.
1: हम अपना मैंडेट का तहफ्फुज़ करना जानते हैं और अपना मैंडेट तहफ्फुज़ करेंगे। नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि उनके लिए अपना हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने ये जिंदगी मौत का सवाल बना दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान की शिकस्त के बाद वो सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब वफाक में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। मगर ये इनका गलतफहमी है, ये अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाते हैं तो लिख लो कोई मसला नहीं, साफ शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में, तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं, मेरा वादा है ना, मेरा वादा। मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई, हम ये पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं है, हमारे पास जियाले है, वो जियाले जिन्होंने जियाल हक का मुकाबला किया, वो जियाले जिन्होंने मुशर्रफ का मुकाबला किया, वो जियाले जो अब तक शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं भाई। आप ये ना समझे कि हम आपको ये करने देंगे, इंसाफ करो तो आपके साथ इंसाफ होगा, धांधली करो तो आपके साथ भी आपका खैर भी नहीं होगा। मैं पीटीआई से, तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे, ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े, इलेक्शन से बॉयकॉट, पार्लियामेंट से बॉयकॉट, कमिटी से बॉयकॉट, अपना काम से बॉयकॉट, जिद्दोजहद से बॉयकॉट।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अनिया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी, सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लॻण, पुराणन ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: ॾाढो सुठो
5: जीए एफ एम 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: इलेक्शन ते दाड़ो हयो वियो त वफाकी सरकार जी उपति गणप शुरू थी वेंदी। इलेक्शन कमीशन के फैसलो करणो पवंदो त को भी मुफ़ाद अहम आहे या नवाज़ लीग जो मुफ़ाद। टीपी चेयरमैन जो मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे के ख़िताब। लाहौल भुट्टे ज़रदारी चयो आहे त इलेक्शन जो फैसलो बुलेट न पर बैलेट सां थियणु घुरिजे। वोट चोरी के कंहिं बि सूरत में लिकाइण न घुरिजे। 2 अगस्त ते चूंडुनि खां पहिरीं इलेक्शन जो समूरो रिकॉर्ड साम्हूं आंदो वञे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन जारी करण जी ॾाढी तकड़ि हुई। छा तव्हां नवाज़ लीग जा इलेक्शन कमिश्नर आहियो या इलेक्शन कमीशन जा? छा तव्हां चाहियो था त पीपल्स पार्टी जा कारकुन ऐं अॻुवाण बि एहतजाज कनि? असां पंहिंजो मैंडेट वापसि वठणु ॼाणियूं था। नवाज़ लीग ते तनक़ीद कंदे पीपी चेयरमैन चयो त ख़बर नाहे तव्हां लाहौर में कहिड़ा कम कया, पर कश्मीर में तव्हां कुझु बि न कयो आहे। असां कश्मीर खे सिंध या पंजाब न, आज़ादु कश्मीर पढ़णु घुरूं था। पीटीआई ते बायकॉट ख़त्मु करण जो ज़ोर भरींदे बिलावल भुट्टे चयो त पीटीआई वारनि खे बायकॉट करिणो आहे त घर वेही रहनि। बायकॉट जी सियासत छॾे ॾियो, ऐं पीटीआई कारकुननि ऐं संजीदा अॻवाननि ॾांहुं हथु वधाइण लाइ तयारु आहियां।

0: मारिया ने हमें धमकियां दे के बुलवाया था और वो वाइजे मेरे पास है।
1: मारिया को माफी मांग लेनी चाहिए, पूरे कानून को वो हाथ में ले रही है। कपड़े एक दो शागिर्दों ने मेरे उतारे, सबों ने नहीं उतारे। जो हमारी जो गलती हम वो अभी भी मान रहे फिर भी मानेंगे, ये तो गलत है ना। ट्रांसजेंडर ने, क्योंकि ट्रांसजेंडर की कौन सी अस्पताल लड़ाई थी या किसी सरकारी अहदे से हमारी कौन सा दुश्मनी हो सकती।
2: ये तो सिर्फ प्यार के भूखे होते, इन पे इंजाम लगाए जा रहे, मैडम मारिया करी जा रही है। हम तो एसपी ऑफिस से ये गुजारिश हमें माफ किया,
3: हमने उसने हमें ब्लैकमेल करके बुलाया, हम आ गए सारे के सारे प्रोटेक्ट करा, दुनिया ने देखा।
4: एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में बंजड्राह केस में नामजद ट्रांसजेंडर वाके जो जिम्मेवार मारे आसारियों के कराजी छोड़ो। अदालत में पेशी के मौके ते टाइम न्यूज से गालंदे ख्वाजा सराउन चो त असां के मारे आसारियों ब्लैक मेल करे घुराए हो। एसएसपी ऑफिस में असां जेको कुछ कयो वो मारे आसारियों के चवण ते कयो। ट्रांसजेंडर चो त बंजड्राह दौरान असां पंहिंजा कपड़ा पाण फाड़िया हुआ, पंहिंजे अड़े अमल ते शर्मसार आहियूं ऐं माफ़ी वठूं था, असांखे माफ़ कयो वञे। गुजू भरसां सीआई पुलिस की कार्रवाई दौरान वीगो गाड़ी कल्टी थी सिमन नाले में किरी पई। जाबदार के पकड़ने की कोशिश दौरान एक अहलकार मुबैना तौर बुरी फोत। सीआई पुलिस से चवण आया तो पीछो करण से मंशास से भरल वीगो गाड़ी सिमन नाले में किरी पई। जाबदारन के पकड़ दौरान सिमन नाले में टपो डींदड़ पुलिस अहलकार मुबीन जाखरू बुरी शहीद थी वो। एक जाबदार के गिरफ्तार किया वो। अहलकार मुबीन जाखरू जो लाश सिविल अस्पताल ठटो मुंतकिल। पुलिस अहलकार के वारसन चवण है तो मुबीन जाखरू सिमन नाले में बुढ़े नो सके, मामले की जांच कराई वही।

ऐं बिरछा में सिंध जे सरमोड़ शहर लाखड़े लतीफ़ जी 283 ओर सॼो तक़रीबूं जारी। एच टी सुरली हाल में लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस चइनी सूबनि मां आयल अदीबनि दानिशवरनि शाइरनि ऐं मुखकनि पारां शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई जे फ़िक्रबाद ते मोकाला पेश। अॼु शाम राग ग्रहण जी तक़रीबी थींदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: It's 7:15 p.m.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: इलेक्शन ते दाड़ो हयो वियो त वफाकी सरकार जी उपति गणप शुरू थी वेंदी। इलेक्शन कमीशन के फैसलो करणो पवंदो तो को भी मुफाद अहम आहे या नवाज़ लीग जो मुफाद। टीपी चेयरमैन जो मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे के खिताब। लाहौल भुट्टे ज़रदारी चयो आहे त इलेक्शन जो फैसलो बुलेट न पर बैलेट सां थियणु घुरिजे। वोट चोरी के कंहिं बि सूरत में लिकाइण न घुरिजे। 2 अगस्त ते चूंडुनि खां पहिरीं इलेक्शन जो समूरो रिकॉर्ड साम्हूं आंदो वञे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन जारी करण जी ॾाढी तकड़ हुई। छा तव्हां नवाज़ लीग जा इलेक्शन कमिश्नर आहियो या इलेक्शन कमीशन जा? छा तव्हां चाहियो था त पीपल्स पार्टी जा कारकुन ऐं अॻुवाण बि एहतजाज कनि? असां पंहिंजो मैंडेट वापसि वठणु ॼाणियूं था। नवाज़ लीग ते तनक़ीद कंदे पीपी चेयरमैन चयो त ख़बर न आहे तव्हां लाहौर में कहिड़ा कम कया, पर कश्मीर में तव्हां कुझु बि न कयो आहे। असां कश्मीर खे सिंध या पंजाब न, आज़ादु कश्मीर बणाइणु घुरूं था। पीटीआई ते बायकॉट ख़तमु करण जो ज़ोर भरींदे बिलावल भुट्टे चयो त पीटीआई वारनि खे बायकॉट करिणो आहे त घर वेही रहनि। बायकॉट जी सियासत छॾे ॾियो, ऐं पीटीआई कारकुननि ऐं संजीदा अॻवाननि ॾांहुं हथु वधाइण लाइ तयारु आहियां।

صدر آصف علی زرداری سان وفاقی گھر وزیر میسر نقوی کی ملاقات خیبر پختونخوا بلوچستان سمیت ملک کے مجموعی سکیورٹی صورتحال تے گالیوں محسن نقوی صدر کے بنی صوبن میں امن امان کی صورتحال دہشتگردی خلاف جاری قدمن بابت بریفنگ ڈنی صدر آصف علی زرداری چو تو دہشتگردی خاتمے ملک میں جٹادار امن لائے سموری قوم پنجے سکیورٹی فورسز سے گڈ بیٹھل ہے صدر پارا دہشتگردی خلاف ویڑھ میں پاک فوج پولیس سمیت قانون لاگو کردڑ سمورن ادارن کے کردار کی واقع लाहौर में टे माड़े इमारत जो छितियों किरण के नतीजे में फो थियल जो अंग वधी 11 थी वो जख्मी थियल चार जणा अस्पताल मुंतकिल डीजी रेस्क्यू रज़ाकार रुजवान नसीर जो चवण है तो मलबे में छह जणन के जिंदा बाहर कढ़े वो एक बार के मलबे में तबियल होजन के खदशे सबब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी इलाके वासन मूजिब तूफानी बरसातन दौरान इमारत की छित कमजोर थी वही हुई रात देर से इमारत के मथी छित किरण बाद हेठी माड़ जो छितू विकरी पय इमारत अंदर टिन भाईरन जहाँ खानदान रहायश पजीर हुआ टिन्ही खानदान जहाँ 15 भाती मलबे में दबजी वह पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीहर इस्लामाबाद मुआदे दाँ आने की भरपूर कोशिश कर रो है खिते में सिक्योरिटी की सूरतहाल अजा विनाशक है परदेह वजारत के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी जो हफ्तेवार ब्रीफिंग दौरान इजहार ताहिर इंद्राबी चो तो असा अमेरिका ए ईरान विच में जारी वेड़ के खात्मे ए गालिन की बहाली लाए तींदड़ समूरन कोशिशन की आजा क्यों था बई दुरी सबर ए सफ का कम वटन परदेही तर्जुमान पारा सऊदी अरब से इराक की सरजमीन तां कल हमलन की भी मज़म्मत पाकिस्तान पारा 16,000 अफगानन के इंसानी बुनियाद से मुल्क अंदर रहायश वे मुद्दे में वाजो फैसलो परदे ऑफिस के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी हफ्तेवार ब्रीफिंग दौरान बुधा तो इंसानी बुनियादन से 16,000 अफगानन के कायम में बात कई पी वे उन अफगानन में बुजुर्ग औरतू ए बार शामिल हैं तर्जुमान चो तो कानूनी वीजा या सफरी दस्तावेज रखंदड़ कें भी अफगान शहरी के पाकिस्तान में निकाली न डनी वही एबीआरपी तहत 99,000 अफगान शहरी के केसन से कार्रवाई कई पी वे अमेरिका जहाँ ईरान से फिजाई हमला बू शहर बंदर अब्बास अबू मूसा केश कुशम बेटन समेत केतर ही हंधन से धमाका अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो चवण है तो हमला ईरान के गुजरियल डी कल मिसाइल हमलन के जवाब में क्या वह हमलन दौरान ईरानी पासारा इनकलाब के फौजी कमांड के मरकजन मिसाइल ए ड्रोन ठिकाणन साहली निगरानी वे निसाब ए नेवल ठिकाणन के निशानों बनाए वो एक्स से पैं बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड चो तो गुजर ढी ईरान विचो भर में अमेरिका के फौजी ठिकाणन से मिसाइल ए ड्रोन हमला किया हुआ बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत वेझो बी अगो अगवा कल छह पोरियतन जहाँ लाश थे सूबाई घर वजीर के मीडिया मामलों बाबत मावन बाबर यूसुफ जई जो चवण है तो शहीद कल छह मजदूर जहाँ गोलियन से परूण थियल लाश मिलिया बी अगो तुर्बत के इलाके नासराबाद वेझो सत मजदूर के अगवा किया वो हो एक पोरियत के थड़े ते गोली हणी मारे वो हो शहीद कल पोरियतन में चैन जो तालुक पंजाब ए बिन पोरियतन जो तालुक खैबर पख्तूनख्वा से है कराची पुलिस मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिनकी के खिलाफ दाखिल कतल केस बादशे में तब्दील कर छो जांच ऑफिसर केस जो हतमी चालान अदालत में जमा कराए छो चालान के स्क्रूनिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मेतलो ए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आरिफ सीताई कई केस में कतल के कलम के कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म किया वो चालान में चो है तो केमिकल रिपोर्ट में साबित थे तो मकतूल जानल शख्स जो मौत नशे सबब थो थियल शख्स की सुणप नी सी है डीएनए जांच भी नी हुई अनमोल उर्फ पिनकी खिलाफ बगदादी पुलिस कतल जो केस दाखिल किया हो लाश मिलने के एक महीने बाद कतल की एफआईआर दाखिल की वही हुई पाक नेवी के जहाज पीएनएस से मुझे कामयाब ऑपरेशन उत्तर अरबी समुंड में फाथल बेड़े के 19 मुहाणन के बचा वो
माणन जी बेड़ी ग्वादर का 120 नॉटिकल मेल परे दखण में इंजन खराब थियण सां फांसी पई हुई। बेड़ी में 11 पाकिस्तानी ऐं 8 ईरानी शहरी सवार हुआ। पाक नेवी जे अमले बेड़ी में फाथल माणन खे खाद खुराक ऐं तिबी इमदाद फराहम कई। हिंगू जे इलाइक़े खज़ीना बांडा में शहीद थियल 11 पुलिस अहलकारनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। आला ऑफिसरनि ऐं मक़ामी माण्हुनि जी वॾे अंग में शिरकत। जनाज़े नमाज़ जी अदायगी बाद मड़ अबाणनि इलाइक़नि ॾांहुं माणिया विया। DPO तारक हबीब मूजिबि दहशतगर्दनि जे खज़ीना बांडा चौकी ते हमले में DSP सिटी दरिया ख़ान समेत 10 अहलकार शहीद थी विया। DSP मुजाहिद हुसैन 22 अहलकार ज़ख़्मी थी विया। हैदराबाद जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत SSP ऑफिस में बंजटरा वारे केस में मारिया सारियो ऐं 14 ट्रांसजेंडर्स जी बुरी ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती। मारिया सारियो ऐं ट्रांसजेंडर्स जे 4 ॾींहनि लाइ बुरी ज़मानत मंज़ूरु कई वई। जांच ऑफिसर इनायत कुरैशी ॿुधणी दौरान चयो त मारिया सारियो केस जी जांच लाइ पेश न पई थिए। मारिया सारियो तोड़े ट्रांसजेंडर्स पिनकी आइडियो फॉरेंसिक लाइ पंहिंजे आवाज़ जो नमूनो ॾियण लाइ लेबॉरेटरी हलण लाइ तयारु न आहे। मारिया सारी चौथा अदालत 50,000 रुपयनि जे मचलकनि एवज़ ज़मानत मंज़ूरु कई।

0: मारिया ने हमें धमकियां दे के बुलवाया था और वो वाइज है मेरे पास है।
1: मारिया को माफी मांग लेनी चाहिए, पूरे कानून को वो हाथ में ले रही है। कपड़े एक दो शागिर्दों ने मेरे उतारे, सबों ने नहीं उतारे। जो हमारी जो गलती है हम वो अभी भी मानने फिर भी मानेंगे, ये तो गलत है ना। ट्रांसजेंडर ने, क्योंकि ट्रांसजेंडर की कौन सी एस्पिक्स लड़ाई थी या किसी सरकारी अहदे से हमारी कौन सा दुश्मनी हो सकती।
2: ये तो सिर्फ प्यार के भूखे होते, इन पे इंजाम लगाए जा रहे, मैडम मारिया करी जा रही है। हम तो एसपी ऑफिस से ये गुजारिश हमें माफ किया,
3: हमने उसने हमें ब्लैकमेल करके बुलाया, हम आ गए सारे के सारे प्रोटेक्ट करा, दुनिया ने देखा।
4: एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में बंजड़ा केस में नामजद ट्रांसजेंडर्स वाके जो जिम्मेवार मारे आसारियों के कराजी छोड़ो। अदालत में पेशी के मौके से टाइम न्यूज से गलंदे ख्वाजा सराउन चो तो असंके मारे आसारियों ब्लैक मेल कर घुराए हो। एसएसपी ऑफिस में असा जो कुछ किया वो मारे आसारियों के चवण से किया। ट्रांसजेंडर्स चो तो बंजड़ा दौरान असा पैंजा कपड़ा पान फाड़िया हुआ, पैंजे अड़े अमल से शर्मसार आयूँ ए माफ़ी वटा, असंके माफ़ किया वे। गुजू भरसा सीआई पुलिस की कार्रवाई दौरान वीगो गाड़ी कल्टी थी सिमन नाले में किरी पई। जाबदार के पकड़ने की कोशिश दौरान एक अहलकार मुबैन तौर बुरी फोत। सीआई पुलिस से चवण आए तो पीछो करण से मंशा से भरल वीगो गाड़ी सिमन नाले में किरी पई। जाबदारन के पकड़ दौरान सिमन नाले में टपो डींदड़ पुलिस अहलकार मुबीन जाखरू बुरी शहीद थी वो। एक जाबदार के गिरफ्तार किया वो। अहलकार मुबीन जाखरू जो लाश सिविल अस्पताल ठटो मुंतकिल। पुलिस अहलकार के वारसन चवण है तो मुबीन जाखरू सिमन नाले में बुढ़े नो सके, मामले की जांच कराई वही।

ऐं भेट शाह में सिंध जे सरमोड़ शाह लाखड़े लतीफ़ जे 283 ओर्स जूं तक़रीबूं जारी। एसटी सुरली हाल में लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस चइनी सूबनि मां आयल अदीबनि दानिशवरनि शाइरनि ऐं मुहक़िक़नि पारां शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई जे फ़िक्रबाद बाबति मोकाला पेश। अॼु शाम राग ग्रहण जी तक़रीब थींदी।

0: नाज़िम बुलेटिन जी शुरुआत में ख़बर शामिल कंदासीं। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी जो पंजो इजलास वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलक जी सदारत हेठि थियो आहे। अवां खे आगाह कंदा हलूं, कमेटी जे मेंबरनि रोज़ानी पेट्रोलियम अघु लागू करण वारे फार्मूले खे साराहियो आहे। ख़बर शामिल कयूं पिया, कमेटी जे मेंबरनि चयो आहे त नए पेट्रोलियम प्राइसिंग निज़ाम सां शफ़ाफ़ियत वधंदी ऐं अघनि में लाद चाड़ घटाइण में मदद मिलंदी। ख़बर शामिल कयूं पिया, वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु आहे त डी रेगुलेशन लाइ वाज़े हदफ़ ऐं मरहला मुक़ररु कया विया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलक जो चवणु आहे त आयल मार्केटिंग कंपनियुनि खे पेट्रोलियम सप्लाई चेन जे मुकमल डिजिटलाइज़ेशन जो ज़िमेवार बणायो वञे। ब्रीफिंग में ॼाणायो वियो आहे त ओगरा जी वेबसाइट ते रोज़ानी पेट्रोलियम अघनि प्राइसिंग फार्मूले ऐं लाॻापियल डेटा जो डैशबोर्ड।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: पहजो शहर पहजो घर सकरण, आए सकरण जो आवाज
2: जी एफ एम 90.8।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
1: Kya aap aasabi dard?
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: इलेक्शन ते दाड़ो हयम वियो तो वफाकी सरकार जी उबती गणप शुरू थी वेंदी। इलेक्शन कमीशन के फैसलो करणो पवंदो तो कौमी मुफाद अहम आहे या नवाज़ी जो मुफाद। पीपी चेयरमैन जो मुजफ्फराबाद में जलसे के खिताब। बिलावल भुट्टे ज़रदारी चयो आहे त इलेक्शन जो फैसलो बुलेट न पर बैलेट सां थियणु घुरिजे। वोट चोरी के कंहिं बि सूरत में लिकाइण न घुरिजे। 2 अगस्त ते चूंडुनि खां पहिरीं इलेक्शन जो समूरो रिकॉर्ड साम्हूं आंदो वञे। इलेक्शन कमीशन खे नोटिफिकेशन जारी करण जी ॾाढी तकड़ि हुई। छा तव्हां नवाज़ लीग जा इलेक्शन कमिश्नर आहियो या इलेक्शन कमीशन जा? छा तव्हां चाहियो था त पीपल्स पार्टी जा कारकुन ऐं अॻवान पे एहतजाज कनि? असां पंहिंजो मैंडेट वापसि वठणु ॼाणियूं था। नवाज़ लीग ते तनक़ीद कंदे पीपी चेयरमैन चयो त ख़बर नाहे तव्हां लाहौर में कहिड़ा कम कया, पर कश्मीर में तव्हां कुझु बि न कयो आहे। असां कश्मीर खे सिंध या पंजाब न, आज़ादु कश्मीर बणाइणु घुरूं था। पीटीआई ते बायकॉट ख़तमु करण जो ज़ोर भरींदे बिलावल भुट्टे चयो त पीटीआई वारनि खे बायकॉट करणो आहे त घर वेही रहनि, बायकॉट जी सियासत छॾे ॾियो। आउं पीटीआई कारकुननि ऐं संजीदा अॻवाननि ॾांहुं हथु वधाइण लाइ तयारु आहियां।

0: इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट दौरान नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स जो जिक्र वफाकी गर्व वजीर पारा मुल्की तरक्की के नाले से नवा सूबा टाइण करार मोहसिन नकवी चो है जै सिस्टम में असा रहूं था वो तबाह थी चुको है मुल्क में नवा इंतजामी यूनिट्स सूबाई मसल जो हल है जेस तीन मुल्क के बुनियादी शयन के ठीक न कंदी मसला रहा जेस तीन सब गड न वेहंदी मुल्क इं ही हलो नवन इंतजामी यूनिट्स सूबे जो मामलो अवाम वट खी वो पव समिट के खिताब में मोहसिन नकवी चो तो नौजवान पैं हक मेड़ से नौकर घुरी रहा है खे नौजवान चो या काक्रोच उ गद थी वह तो हर शे उथलए सकंदा काक्रोचन के गद थे पैरी निज़ाम ठीक कर नवा सूबा टा
1: This house supports in principle the establishment of an independent impartial and suitably empowered truth commission as an institutional mechanism for the peaceful and lasting resolution of the present crisis
2: madaskara wala police station ha par dobara saaf shwab polling pak army ki zar nigrani karwai jaye
3: jo bhi bran is qaradat ke haq mein hain wo ha ke hain jo mukhalif hain na ke qaradat manzoor ki jati hai badhan
0: आज़ाद कश्मीर के कानून साज असेंबली बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तजवीज़ कल ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन के क़याम वो ठहराव मंजूर कर वरतो मीरपुर डिवीजन में चूंड दौरान मुबैना दांधलन खिलाफ़ पेश कल ठहराव भी मंजूर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासिन बिलावल भुट्टो की तजवीज़ कल कमीशन के क़याम लाइ ठहराव पेश कर पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल मुबैना दांधलन खिलाफ़ ठहराव पेश कर चौधरी यासिन ठहराव पेश कदे तो मुजाहरीन कमीशन के क़याम तई एहतजाज खत्म कन ए हुकूमत भी वधिक कार्रवाई न करे पुरतशद वाक्यों में अजल के शिकार थियल शहर एहलकार के वारसों से दुख ए हमदर्दी जो इजहार जावेद इकबाल के ठहराव में मुबैना दांधलन की मज़म्मत ए इलेक्शन कमीशन का दांधलन की जांच कराने का मुतालबो सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान समेत मुल्क के मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल बाबत गाल मोहसिन नकवी सदर के बिन्हीं सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ए दहशतगर्द खिलाफ़ जारी कदम बाबत ब्रीफिंग दिनी सदर आसिफ अली जरदारी चो तो दहशतगर्दी के खात्मे मुल्क में जटादार अमुन लाए समूरी कौम पैंजी सिक्योरिटी फोर्सेस से गड बीठल है सदर पारा दहशतगर्दी खिलाफ़ वेड़ में पाक फौज ए पुलिस समेत कानून लागू कड़ समूर इदार के किरदार की वाखान लाहौर में टे माड़ इमारत जो छितियों केड़े के नतीजे में फौत थियल अंग वधी 11 थी वो जख्मी थियल चार जणा अस्पताल मुंतकिल डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर जो चवण है मलबे में 6 जणन के जिंदा बाहर कढ़े वो एक बार के मलबे में दबियल होजन के खदशे सबब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी इलाके वासन मूजिब तूफानी बरसात दौरान इमारत की छित कमजोर थी वही हुई रात देर से इमारत के मथी छित करण बाद हेठी माड़ जो छितियों बिकरी पे इमारत अंदर टन बार खानदान रहायश पजीर हुआ टिन्हीं खानदान जो 15 बाती मलबे में दबजी वह पाकिस्तान अमेरिका ए ईरान के बीहर इस्लामाबाद मुआदे डा आने की भरपूर कोशिश कर रो है खिते में सिक्योरिटी की सूरत हाल अजा भी नाजुक है परदे वजारत के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी जो हफ्तेवार ब्रीफिंग दौरान इजहार ताहिर इंद्राबी चो तो असा अमेरिका ए ईरान विच में जारी वेड़ के खात्मे गालिन की बहाली लाए थींदड़ समूरन कोशिशन की आजा क्यों था बई दुनिय सबुर ए सहप का कम वठन परदे तर्जुमान पारा सऊदी अरब से इराक की सरजमीन तक कल हमलन की भी मज़म्मत पाकिस्तान पारा 16,000 अफगानन के इंसानी बुनियाद से मुल्क अंदर रहायश वे मुद्दे में वाद फैसलो परदे ऑफिस के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी हफ्तेवार ब्रीफिंग दौरान बुधायो तो इंसानी बुनियादन से 16,000 अफगानन के क़याम में वाद कई पे वे उन अफगानन में बुजुर्ग औरतू ए बार शामिल हैं तर्जुमान चो तो कानूनी वीज़ा या सफरी दस्तावेज़ रखड़ कें भी अफगानी शहरी के पाकिस्तान में निकाली न डनी वही है आरएफपी तहत 99,000 अफगान शहर के केसन से कार्रवाई कई पी वे अमेरिका जा ईरान से फिसाई हमला बूशर बंदर अब्बास अबू मूसा कोश ए कुसियम बेटन समेत केतरन ही हंधन से धमाका। अमरीकी सेंट्रल कमांड जो चवण है तो हमला ईरान के गुजर ढी कल मिसाइल हमलों के जवाब में क्या व्या। हमलों दौरान ईरानी पासदारन इनकलाब के फौजी कमांड के मरकजन मिसाइल ए ड्रोन ठिकाणन साइली निगरानी वे निज़ाम ए नेवल ठिकाणन के निशानों बनाए वो। एक्स से पे बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड है तो गुजर ढी ईरान विच ओभर में अमरीका के फौजी ठिकाणन से मिसाइल ए ड्रोन हमला क्या हुआ। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत वेझो बड़ी अगो अगवा कल छह पोरियतन ज लाश थे। सूबाई घर वजीर के मीडिया मामलन बाबत मावन बाबर यूसुफ सही चवण है शहीद कल छह मजदूर जहाँ गोलन से परून थे लाश मिले हैं। बड़ी अगो तुर्बत के इलाके नासराबाद जो सत मजदूर के अगवा किया वो एक पोरियत के थडे ती गोलियों हणी मारे वो। शहीद कल पोरियतन में चैन जो तालुक पंजाब ए बिन पोरियतन जो तालुक खैबर पख्तूनख्वा से है। एस यू पी पारा सिंध ते धाड़े खिलाफ सिंधुओं से धाड़े खिलाफ 3 अगस्त से कराची ए 22 अगस्त से हैदराबाद में रैली जो ऐलान। 27 सितंबर से नंदन जो आलमी डी सिंधु बचाओ के नारे हेठ मल्हाय वो। सिंध के नंढन वडन शहरों में रैलियस कड़ी वेंदू। जामचोरे में एस यू पी के इजलास बाद सैफ जैन शाह के पार्टी अगवाणन से गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैन शाह चो तो सिंधु से तकरारी कैनाल खिलाफ जदोजहद जारी रखी वेंदी। ठठो पुलिस विगो गाड़ी में सवार मंशात फरोशन के गिरफ्तार करी था हुआ। जवाबदार के तशद में एहलकार मुबीन जाखरो जी शहीद। पुलिस जो चवण है तो मंशात से भरल विगो गाड़ी कल्टियों खाई सेमनाले में किरी पई। पुलिस मंशात फरोशन के गिरफ्तार करने की कोशिश कई तो तशद में एहलकार शहीद थी वो। उनखां पोए मुकाबले दौरान बिन मंशात फरोशन के गिरफ्तार किया वो। बे पासे शहीद एहलकार के वारसन पारा वाक़े की शफाफ जाँच कराए जिम्मेदारन खिलाफ कार्रवाई का मुतालबो। आई जी सिंध नोटिस वटंदे एसएसपी ठठो का रिपोर्ट घुराई वरती। हैदराबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत एसएसपी ऑफिस में भंजटरावारे केस में मारिया सारियो ए 14 ट्रांसजेंडर की बुरी जमानत मंजूर कर वरती। मारिया सारियो ए ट्रांसजेंडर के 4 दिन लाए बुरी जमानत मंजूर की वही। जांच ऑफिसर इनायत कुरैशी बुधनी दौरान चो तो मारिया सारियो केस की जांच लाइ पेश न पई थे। मारिया सारियो तोड़े ट्रांसजेंडर स्पिनकी आईडी फारसिंग लाइ पांजे आवाज जो नमूनो दियण लाइ लेबॉरेटरी तैयार ना। मारिया सारियो चो तो अदालत 50,000 रुपये के मचलकन एवज जमानत मंजूर कई।
4: मारिया ने हमें धमकियां दे के बुलवाया था और वो वाइज है मेरे पास है।
5: मारिया को माफी मांग लेनी चाहिए, पूरे कानून को वो हाथ में ले रही है। कपड़े एक दो शागिर्दों ने मेरे उतारे, सबों ने नहीं उतारे। हमारी जो गलती हम वो अभी भी मान रहे फिर भी मानेंगे, ये तो गलत है ना। ट्रांसजेंडर ने क्योंकि ट्रांसजेंडर की कौन सी एसपी के साथ लड़ाई थी या किसी सरकारी अहदे से हमारी कौन सा दुश्मनी हो सकती है।
6: ये तो सिर्फ प्यार के भूखे होते, इन पे इंजाम लगाए जा रहे। मैडम मारिया करी जा रही है, हम तो एस पी ऑफिस से ये गुजारिश हमें माफ किया।
7: हमने उसने हमें ब्लैकमेलिंग करके बुलाया, हम आ गए सारे के सारे प्रोटेक्ट करा, दुनिया ने देखा।
0: एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में भंजटराह केस में नामजद ट्रांसजेंडर्स वाक्य जो जिम्मेदार मारिया सारियो के करार दी छो। अदालत में पेशी के मौके ते टाइम न्यूज से गलंदे ख्वाजा सरान चो तो असा के मारिया सारियो ब्लैकमेल कर घुराय हो। एसएसपी ऑफिस में असा जो कुछ कयो वो मारिया सारियो के चवण से कयो। ट्रांसजेंडर्स चो तो भंजटराह दौरान असा पंजा कपड़ा पान फाड़िया हुआ, पांजे अड़े अमल से शर्मसार आयो, माफी वटूं था, असा के माफ़ किया वही।

मीरपुर खास भरिसां तेज़ रफ़्तार ट्रैक्टर ऐं चिंकी रक्षा में टकर, नौजवान राजा ठाकुर फोत, औरतुनि ऐं ॿारनि सूधो 6 ॼणा ज़ख़्मी, 2 ज़ख़्मी गर्ची जोगी हालत में हैदराबाद मुंतकिल। खिपरो भरिसां तेज़ रफ़्तार रिक्शा कल्टी, ड्राइवर हरजी बील थॾे ते ई फोत। दादू भरिसां मोटरसाइकिल में बुरको फासण सबबु औरत नसर जो फोत।

ऐं बिरशाह में सुंजे सर मोरशा लाखणे लतीफ़ जे 283 उर्स जूं तकरीबूं जारी। एस टी सोरली हाल में लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस चइनि सूबनि मां आयल अदीबनि, दानिशवरनि, शाइरनि ऐं मुहक़क़नि पारां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे फ़िक्र बाबति मकाला पेश। अॼु शाम राग रहण जी तकरीब थींदी।

0: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में मलिकार आमिया फरहान कलोड़ो एयरलाइन सवाने थी तफसील खबरों शॉर्ट ब्रेक हम पोए।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: You are watching 10 p.m. bulletin.
5: वफाकी घर वजीर मुल्की तरक्की के नाले से नवन सूबन के अणटर करार दी छो बकवी जो है इंतजामी यूनिट्स या सूबा जो भी नालो दियो असा के उन पास वनो पव जै निज़ाम में अस रहूँ था वो किरी पो है उनके रीसेट करण का सवाल मसला हल ना थी सकन। पाकिस्तान के पेरे इकोनॉमिक समिट के खिताब में वफाकी वजीर नौजवान के लैपटॉप ए ब चार हजार दिए खुश ना कर सकूँ। नौजवान के हक दियण पव उहे जेकॾहिं गॾु थिया त हर शइ खे ऊंधो करे सघनि था। साफ़िन सां गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल में मोहसिन नक़वी चयो त जेसि ताईं सियासतदान मुल्क जो निज़ाम ठीकु न कंदा फील्ड मार्शल जी महिनत जो को बि फ़ाइदो न थींदो। फील्ड मार्शल हर चयो त जमहूरियत खे डीरील थियणु न ॾींदासीं, निज़ाम खे बहितर करण लाइ समूरनि सियासी पार्टियुनि खे गॾु थियणो पवंदो। रुॻो नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी न पीटीआई खे बि ही निज़ाम बहितर करण लाइ गॾु थियणो पवंदो। मोहसिन नक़वी चयो त सदारती निज़ाम जी ॻाल्हि न करे रहियो आहियां, हीअ हुकूमत पंहिंजो मुदो पूरो कंदी, पीटीआई बानी बाबति अदालतूं फैसला कंदियूं।

आज़ाद कश्मीर जी चूंडन ते दहाड़ो हयो वियो त वफाकी हुकूमत जी उबती गणप शुरू थी वेंदी। मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे के ख़िताब दौरान पीपी चेयरमैन जी धमकी। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त जेकॾहिं आज़ाद कश्मीर में शफ़ाफ़ चूंडियूं करायूं त वफाकी सरकार खे को मसइलो न थींदो। असांजो मैंडेट चोरी कयो त पीपल्स पार्टी तव्हांजे तख़्त लाइ अची वेंदी। इलेक्शन कमीशन जहिड़नि रियासती इदारनि खे फ़ैसिलो करणो पवंदो त तव्हां लाइ क़ौमी मुफ़ाद वधीक आहे या नवाज़ लीग जो मुफ़ाद। छा तव्हां छा था चाहियो त मीरपुर ऐं मुज़फ़्फ़राबाद में पीपल्स पार्टी जा कारकुन एहतजाज कनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीटीआई ॾांहुं हथु वधाईंदे चयो त बाइकाट जी सियासत छॾियो ऐं चूंडूं विड़ो। जेका बि पार्टी धांधली खां बेज़ार आहे उहा असांजो साथ ॾे।

अमेरिका जा ईरान के नवन शहरों से हमला। जवाब में ईरान पारा उर्दन में अमेरिकी फौजी अडे से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। केतरा अमेरिकी फौजी मारजन की दवा। टे जदीद F-35 विढ़ाक जहाजन तबाह कर केतर ही जहाजन के नुकसान पहुंचाने की दवा। उन अमेरिकी हमलन में ईरान के शहर कुशम में रायशी इमारत के निशानों बनाया वो। जाल मुड़स बिन साल बार शहीद। पासदारन इनकलाब पारा भी अमेरिकी हमलन में टन शहादत की तस्दीक।

बोस्टन सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। फ़िलहाल अमरीकी मुदाख़लत जी ज़रूरत न आहे। सऊदी अरब चयो आहे त इराक में हमलनि जो मक़सदु होसन खे नियापो ॾियणो हो। इराक में अमरीकी ऐं सऊदी हमलनि खां पोइ सऊदी बचाव वारे वज़ीर जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐं नायब सदर जेडी वेंस सां हंगामी मुलाक़ात। सऊदी बचाव जी वज़ारत चयो त ईरानी हिमायता इराकी मलेशिया बुनियादी ढांचे ऐं तबानई ठिकाणनि ते हमला करे रेड लाइन क्रॉस कई, उन करे जवाबु ॾियणो पियो। अमरीकी मीडिया मूजिबि सऊदी बचाव वारे वज़ीर अमरीकी नायब सदर खे चयो त नेतन याहू ईरान सां शिकतान वधाइण ते ज़ोर भरे रहियो आहे, पर सऊदी अरब शिकतान घटाइणु घुरे थो।

0: लाहौर जे इलाइक़े बाग बानपुर में ब माड़े इमारत जी छित किरण सबब हिक ई कुटुंब जा यारहं भाती फोत। ब माड़ घर में टे भाइर रहंदा हुआ। हिक जे पुट जी सालगिरह हुई त भेण बि ख़ुशियुनि में शिरकत लाइ पए थी। इमारत जी आख़िरी मार वारी छित ॿी ऐं पोइ ॿिए माड़ जी छित ग्राउंड ते किरी पई। रेस्क्यू अख़्तियारनि मूजिबि घर जूं टई छितियूं टीयर गार्डर सां ठहियल हुयूं। बरसातुनि खां पोइ बचण लाइ ताज़ो छित ते मिटी रखाई वई हुई, पर छित वज़न बर्दाश्त न करे सघी। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ पारां वाक़िए ते अफ़सोस जो इज़हार। उनखां अॻु 30 जून ते कमरा में निजी ट्यूशन सेंटर जी सेबुन हाल छित किरण सबबि 14 ॿार फोत थिया हुआ।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।